सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की इस मधुर शांत और सुनहरी बेला में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं वागड़ की आवाज, यानी कि आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, हाजिर हो चुके हूँ आपके लिए इस नई सुबह की ताजगी, अपनापन और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर। साथियों, रविवार की सुबह सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये एक एहसास होता है सुकून का, अपनापन का और खुद से जुड़ने का। और इसी एहसास को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रमों की एक प्यारी सी श्रृंखला। तो आइए साथियों, इस सुहानी सुबह के सफर पर चलते हैं साथ साथ। साथियों, दिन की शुरुआत होगी सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना से, जहां भक्ति के मधुर सुर मन को शांति देंगे और आत्मा को सुकून से भर देंगे। तो आइए प्रभु स्मरण के साथ अपने दिन का शुभारंभ करते हैं साथियों। इसी के बाद सुबह 6:30 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, जिसमें आप जानेंगे महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसी के बाद सुबह 7 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम कथा कहानी, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सिर्फ कहानियां सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में भी उतारी जाती है और जीवन को एक नई सीख देती है। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इसी के बाद दोस्तों प्रस्तुत होगा कार्यक्रम बात मन है दिलों की, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 7:30 पर। साथियों, ये कार्यक्रम बचपन की मासूम हंसी, छोटे छोटे सपने और सच्चे दिल की बातों से जुड़ा कार्यक्रम है, जो हर चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। इसी के बाद दोस्तों 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान, जहां मिलेंगे हम कुछ खास लोगों से, उनकी कहानियां, उनके अनुभव और उनके जीवन के प्रेरणादायक सफर के साथ। इसी के बाद दोस्तों 8:30 पर कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन हम सुनेंगे, जहां बात होगी सादगी, सत्य और अहिंसा के उस मार्ग की, जो आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं। इसी के आगे अब बारी है साथियों एक बेहद खास और घर की खुशबू से भरे कार्यक्रम की, यानी कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, जहां मिलेंगे दोस्तों पारंपरिक स्वाद, घरेलू नुस्खे और दादी माँ के प्यार से भरे व्यंजन, जो सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखे। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे ठीक सुबह 9 बजे हमारी रेडियो साथी के साथ में। इसी के बाद दोस्तों सुबह 10 बजे बारी है गीत संगीत की, यानी कि कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें हम जुड़ेंगे साथियों नए और लोकप्रिय गीतों के साथ, जो आपके दिल को छू जाए। इसी के बाद 11 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें होगी हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी परंपराओं की मिठास और संस्कृति की झंकार, सब कुछ एक साथ कार्यक्रम लोक संगीत। तो जैसा कि साथियों हम कार्यक्रम की रूपरेखा जान ही पा रहे हैं, इसी के बाद अब अंत में कार्यक्रम हम सुनेंगे ठीक 12 बजे भूले बिसे नगमे, जिसमें हम प्रवेश करेंगे साथियों पुराने गीतों की वो मधुर दुनिया में, जो हमें यादों की खूबसूरत सफर पर ले जाती है। तो साथियों, ये सुबह सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं, यह एक अनुभव है, जहां भक्ति है, सीख है, मासूमियत है और प्रेरणा भी है, साथ ही संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो बने रहिएगा साथियों हमारे साथ, क्योंकि यहां हर आवाज है खास और हर पल है आपके नाम। तो श्रोता साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को, और शुरुआत करते हैं साथियों आज की सभा की पहले कार्यक्रम आराधना से।

श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने,

0: आंकड़ों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण सात जन से व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। संघर्ष के बीच एक एहसास जो हमें मजबूत बनाता रहा, यह महापुरुषों की अनकही प्रेरणा।

0: साथियों, सत्य को अपना हथियार बनाइए, अहिंसा को अपना रास्ता बनाइए और बदलाव की शुरुआत खुद से कीजिए।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगरानी

0: इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपने नियत समय पर एक महान पुरुष के जीवन परिचय को लेकर। जागृति जी, आज का दिन हमें उस व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसी दिशा दी जिसमें संघर्ष के साथ सत्य, अहिंसा और आत्मबल को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला।
1: बिल्कुल,
0: आज हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें देश महात्मा गांधी के नाम से जानता है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि महात्मा गांधी जी के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताए, तो साथी भारत का इतिहास ऐसे महान व्यक्तित्व से भरा हुआ है जिन्होंने अपने विचारों, त्याग, संघर्ष और कर्मों से देश को नई दिशा दी, जैसा कि अभी आपने बताया। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्र भारत में ईमानदार नेतृत्व, सादगी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। दोनों ही महापुरुषों का जीवन आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि हम सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन परिचय से श्रोता साथियों को रूबरू करा रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल,
0: उनका जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर जागृति जी ऐसे सार्वजनिक जीवन तक पहुंचा जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का जीवन केवल स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी नहीं है, यह सत्य की तलाश, आत्म अनुशासन, सादगी और समाज के कमजोर लोगों के प्रति संवेदनशीलता की भी कहानी रही है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की थी। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बने। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन उनके जीवन की वास्तविक दीक्षा दक्षिण अफ्रीका में बदल गई। श्रोता साथियों, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के बारे में आपको बताएं, तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को करीब से देखा। एक घटना ने उनके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया जब उन्हें रंग भेद के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर कर दिया गया। इस अनुभव ने गांधी जी को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया और सत्य तथा अहिंसा पर आधारित संघर्ष की पद्धति विकसित की। अंजलि, उन्होंने सत्याग्रह को अपना प्रमुख साधन बनाया। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए दृढ़ रहना और अन्याय का विरोध करते हुए हिंसा का सहारा न लेना।
0: बिल्कुल जागृति जी, सत्याग्रह का अर्थ जैसा कि आपने बताया कि विरोध करना नहीं था, सत्य का दृढ़ता से सामना करना था।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, गांधी जी का विश्वास था कि किसी गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन संघर्ष का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: ये विचार बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी दिखाई दिया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यही बात करते हैं भारत वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन की। तो गांधी जी, जागृति जी 1915 में भारत लौटे।
1: बिल्कुल,
0: भारत में आने के बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे आंदोलन ने उन्हें जनता के बीच एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया।
1: बिल्कुल,
0: आगे चलकर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वतंत्रता संघर्षों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहने दिया, उन्होंने आम लोगों को भी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया था।
1: बिल्कुल अंजलि, और 1930 का दांडी मार्च गांधी जी के संघर्ष का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की। इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर में नई ऊर्जा पैदा की। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका संदेश था श्रोताओं कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए और इसके लिए देशवासियों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं था श्रोताओं, उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया। वे मानते थे अंजलि कि हिंसा से प्राप्त विजय स्थायी नहीं होती है, सच्ची शक्ति सत्य आत्मसंयम और नैतिक साहस में होती है। गांधी जी स्वच्छता, ग्राम विकास, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा पर भी जोर देते थे। वे चाहते थे कि गांव मजबूत हो और ग्रामीण लोग अपने स्थानीय संसाधनों और श्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। उनका भौतिक जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में याद किए जाते हैं। हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जैसा कि अभी हमने 2 दिन पहले मनाई है, और ये दिन हमें सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और मानवता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने समाज में छुआछूत जैसी प्रथाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई और सामाजिक बराबरी पर जोर दिया था। उनका मानना था कि देश की आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि समाज के भीतर मौजूद भेदभाव और अन्याय को कम करना भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बदलाव की सबसे बड़ी सीढ़ी दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि अपने आचरण में वह बदलाव लाना है जिसे हम समाज में देखना चाहते हैं। आज हमारे सामने जागृति जी समस्याओं का रूप बदल गया है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सत्य, ईमानदारी, संवाद, स्वावलंबन और अहिंसा जैसे मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। हम अपने गांव में छोटे से शुरुआत कर सकते हैं कि बच्चों को सच बोलने की आदत सिखाएं, विवाद को बातचीत से सुलझाएं, स्थानीय चीजों और श्रम का सम्मान करें, स्वच्छता का ध्यान रखें और किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें।
1: बिल्कुल,
0: वे छोटे कदम हैं जिनसे बड़े सामाजिक बदलाव की नींव तैयार होती है।
1: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने गांधी जी के बारे में जाना कि गांधी जी का जीवन कैसा था और उन्होंने देश के प्रति क्या क्या किया।
0: बिल्कुल,
1: आगे भी हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, सादगी हो जीवन की पहचान, ईमानदारी हो सबसे बड़ा सम्मान, देश हित को रखे सबसे आगे, यही है शास्त्री जी का संदेश महान।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि गीत से पहले हमने हमारे श्रोता साथियों को गांधी जी के जीवन परिचय से अवगत करवाया था, यही लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को हम अवगत करवाते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक और बाद में राजस्व विभाग में कार्यरत थे। शास्त्री जी की माता का नाम रामदुलारी देवी था। अंजलि, शास्त्री जी का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। उनका पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के साथ शास्त्री जी शब्द को अपना लिया।
0: बिल्कुल जागृति जी, उनका जीवन ये बताता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, शिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता दे सकती है। उनके भीतर देश सेवा की भावना भी बचपन से मजबूत हो गई थी।
1: बिल्कुल,
0: महात्मा गांधी के विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से शास्त्री जी प्रभावित हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। उनका जीवन जागृति जी संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया।
1: बिल्कुल,
0: वे उन नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल राजनीतिक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी के रूप में भी देखा था।
1: बिल्कुल अंजलि, यही जय जवान जय किसान के बारे में बात करें तो शास्त्री जी ने देश के सैनिकों और किसानों के महत्व को समझते हुए प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस नारे में भारत की शक्ति की दो महत्वपूर्ण आधार दिखाई देते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान और देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान। शास्त्री जी ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। श्रोता, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने देश का नेतृत्व किया। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने देशवासियों का मनोबल बढ़ाया और एकता का संदेश दिया। अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर रहते हुए भी उनका जीवन बहुत ही साधारण था। उनका मानना था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अपने आचरण से लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है श्रोताओं कि महान बनने के लिए धन दिखावा या सुविधाएं आवश्यक नहीं है, महानता व्यक्ति के चरित्र कर्म और विचारों से आती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में देश को खाद्यान्न की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने लोगों से कठिन समय में संयम और सहयोग की भावना रखने की अपील की थी। उनका अपना जीवन भी सादगी का उदाहरण था। वे दिखावे के बजाय, जैसा कि आपने बताया, कि जिम्मेदारी और अनुशासन को महत्व देते थे। अगर हम शास्त्री जी के जीवन को गांव से जोड़कर देखें तो उनकी सोच आज भी कई स्तरों पर समझी जा सकती है। किसान मेहनत करता है तो हमें खेती और श्रम का सम्मान करना चाहिए, अन्न की कीमत समझनी चाहिए और भोजन की बर्बादी से बचना चाहिए। गांव के विकास में हर व्यक्ति की भूमिका होती है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, स्वास्थ्यकर्मी हो या युवा। हर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करे तो समाज मजबूत होता है। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि शास्त्री जी का जीवन हमें यह भी समझाता है कि देश सेवा केवल बड़े पद पर बैठकर नहीं होती, अपने काम को जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना भी देश सेवा का एक रूप है।
1: बिल्कुल अंजलि, 1966 में शास्त्री जी सोवियत संघ के ताशकंद गए, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के लिए बातचीत हुई। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन भले ही अपेक्षाकृत छोटा रहा श्रोता साथियों, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों से भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी। हम कहना चाहेंगे कि दो महान व्यक्तित्व, दो अलग अलग दौर और एक समान उद्देश्य, देश की सेवा और समाज का कल्याण। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा की राह दिखाई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत इस बात की अंजलि कि हम केवल इन महापुरुषों को याद न करें बल्कि उनके विचारों को अपने व्यवहारों में भी उतारें। सत्य हमारे शब्दों में हो, ईमानदारी हमारे कर्मों में हो, सेवा हमारे व्यवहार में हो और देश हित हमारी सोच में हो। गांधी जी का सत्य और शास्त्री जी का संकल्प, यही बने हमारे जीवन का मजबूत आधार। तो श्रोताओं, श्रद्धा और सम्मान के साथ हम उन्हें याद करें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए समझे कि सच्ची देश सेवा आखिर होती क्या है।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ साथी विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय से जहां तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हां श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vangthara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक महान पुरुष की प्रेम गाथा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है कठोर आलोचना का सामना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कठोर आलोचना का सामना कैसे करें। साथियों, कहानी शुरू होती है इस तरह से कि शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाला लड़का बचपन से ही अलग सोच रखता था। जहाँ उसके हम उम्र बच्चे खेल कूद में समय बिताते, वहीं करण किताबों, सवालों और सपनों में खोया रहता था। वह अक्सर छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी कुछ अलग कर सकता हूँ। लेकिन अलग होना आसान नहीं होता श्रोताओं, अलग होने की कीमत चुकानी पड़ती है और उस कीमत का नाम होता है आलोचना। साथियों, करण जब स्कूल में था तब उसने एक बार विज्ञान प्रदर्शनी के लिए नया प्रयोग तैयार किया। वह प्रयोग किताबों में लिखे उत्तरों से अलग था। शिक्षक ने प्रयोग देखा, भुएं चढ़ाई और सबके सामने कह दिया, ये बहुत बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। साथियों, पूरी कक्षा हंस पड़ी। करण का चेहरा लाल हो गया, आंखें झुक गई और दिल में पहली बार ये टिस उठी, कठोर आलोचना की टिस। उस दिन वो घर आया, प्रयोग के सारे कागज फाड़ दिए और सोचने लगा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। श्रोताओं, समय बीतता गया, करण बड़ा हुआ, लेकिन आलोचना उसका पीछा करती रही। जब उसने कॉलेज में कला के साथ विज्ञान को जोड़कर पढ़ने की इच्छा जताई तो लोगों ने कहा, करियर बर्बाद कर रहा है। जब उसने नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का सोचा, रिश्तेदार बोले, आजकल के बच्चे जिम्मेदार नहीं होते। हर बार शब्द बदलते पर भाव वही रहता, नकारना, कमतर आंकना और तोड़ना। साथियों, करण के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक आवाज कहती, सब गलत कह रहे हैं, और दूसरी आवाज फुसफुसाती, कहीं वे सही तो नहीं है। श्रोताओं, एक दिन करण ने अपना लिखा हुआ लेख एक प्रतिष्ठित पत्रिका में भेजा। कई हफ्तों बाद जवाब आया, लेखन में परिपक्वता की कमी है, विषय पर पकड़ कमजोर है। श्रोताओं, बस ये पंक्तियां करण को अंदर तक तोड़ गईं। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसे लगा जैसे हर आलोचना उसके आत्मविश्वास पर हथौड़े की तरह पड़ रही हो। वह सोचने लगा, क्या आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ न करना। अगले दिन वो यूं ही पार्क में टहल रहा था। श्रोताओं, वही एक बुजुर्ग व्यक्ति बेंच पर बैठे किताबें पढ़ रहे थे। करण अनजाने में उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो मुस्कुराए और पूछा, बेटा परेशान लग रहे हो। करण न चाहते हुए भी बोल पड़ा, उसने सारी बातें कह दी, अपनी कोशिशें, असफलता और लोगों की कठोर आलोचनाएं। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा क्या तुमने कभी मूर्तिकार को पत्थर तराशते हुए देखा है। करण ने सिर हिलाया, पत्थर पर सबसे पहले क्या पड़ता है, हथौड़ा और छेनी, करण बोला। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, वही हथौड़ा और छेनी जो पत्थर को चोट पहुंचाते हैं, उसी से सुंदर मूर्ति निकलती है। सवाल ये नहीं कि चोट लगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम पत्थर हो या मूर्ति बनना चाहते हो। उस दिन पहली बार करण ने आलोचना को नजरिए से देखा। श्रोता, उसे समझ आया, हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती, हर नकारात्मक शब्द सच्चाई नहीं होते और हर राय को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। उसने खुद से पूछा, क्या यह आलोचना मुझे बेहतर बना सकती है। अगर जवाब हाँ होता तो वो सीख लेता, अगर जवाब नहीं होता तो वह उसे छोड़ देता। साथियों, करण ने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार वो आलोचना से डर नहीं रहा था। जब कोई कहता है कमजोर है, वो पूछता, कहाँ सुधार हो सकता है। जब कोई हंसता, वह सोचता, हंसी मेरी दिशा तय करेगी। धीरे धीरे दोस्तों, उसने ये सीख लिया कि आलोचना को अपनी पहचान नहीं, अपना औजार बनाना है। कुछ महीनों बाद उसी पत्रिका ने लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की। करण के मन में डर था, पुरानी अस्वीकृति का डर, लेकिन इस बार उसने डर से नहीं, साहस निर्णय से लिया। उसने लेख भेजा, परिणाम आया। साथियों, करण का लेख चयनित हुआ। वो जीत नहीं थी, लेकिन ये साबित करने के लिए काफी था। दोस्तों, आलोचना अंत नहीं होती, कभी कभी शुरुआत भी होती है। और आज करण सफल है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो संतुलित है। वो जानता है कि प्रशंसा से बहकना नहीं है, आलोचना से टूटना नहीं है और अपने मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं करने। जब कोई कठोर आलोचना करता है, वो मुस्कुराकर सोचता है, ये शब्द मेरी राह नहीं रोक सकते अगर मैं उन्हें रास्ता न बनने दूं। ये कहानी हमें संदेश देती है दोस्तों कि कठोर आलोचना जीवन का हिस्सा है, वो हमें गिराने भी आ सकती है और उठाने भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे कैसे लेते हैं। आलोचना को सुनिए, लेकिन खुद को मत खोइए। सीख लीजिए, लेकिन आत्मसम्मान मत छोड़िए। और याद रखिए साथियों, जो लोग आगे बढ़ते हैं वही सबसे ज्यादा आलोचना झेलते हैं। कठोर आलोचना से बचने का तरीका ये नहीं है कि सपने छोड़ दिए जाएं, बल्कि ये है श्रोताओं कि इतने मजबूत बन जाएं कि आलोचना हमें तराश सके, तोड़ न सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी
आलोचना को लेकर आज मैंने आपको सुना है कि कठोर आलोचना का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से इस कहानी के माध्यम से करण ने आलोचना को सहा और अपने जीवन को संवार दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है वो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी, और कहानी का शीर्षक था कठोर आलोचना का सामना कैसे करें। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है साथियों कि आलोचना जीवन का वो आईना है जिसमें हम अपनी वास्तविक छवि देख सकते हैं। यदि हम देखने का साहस रखें, अक्सर जब कोई हमारी आलोचना करता है श्रोताओं, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे आत्मसम्मान पर चोट की गई हो। शब्द तीर की तरह चुभते हैं और मन तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन यहीं से आलोचना की सबसे बड़ी शिक्षा शुरू होती है। श्रोताओं, आलोचना हमें सबसे पहले धैर्य सिखाती है। हर व्यक्ति तुरंत प्रशंसा सुनना चाहता है, पर आलोचना सुनने के लिए संयम चाहिए होता है। जब हम बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए शांत मन से आलोचना को सुनते हैं, तब हम खुद को भावनाओं के बहाव से ऊपर उठाते हैं, और यही धैर्य हमें परिपक्व बनाता है। आलोचना की दूसरी शिक्षा है श्रोताओं, आत्ममंथन। हर आलोचना सही नहीं होती, लेकिन हर आलोचना बेकार भी नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम आलोचना को दो हिस्सों में बांटे, एक जो हमें सुधार की दिशा दिखाए, दूसरी जो केवल नकारात्मकता से भरी हो। जो उपयोगी हो उसे अपनाए, जो बेकार हो उसे छोड़ दे। यही विवेक श्रोताओं आलोचना को बोझ नहीं साधन बनाता है। इसलिए आलोचना हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब तक तारीफ करते हैं तो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझने लगता है, लेकिन आलोचना याद दिलाती है श्रोताओं कि सीखने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। जो व्यक्ति आलोचना से भागता है वह वहीं रुक जाता है, और जो उसे स्वीकार करता है वह आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए आलोचना की एक बहुत बड़ी शिक्षा ये भी है कि दुनिया को खुश करना असंभव है। हर कदम पर कोई न कोई असंतुष्ट मिलेगा श्रोताओं। यदि हम हर किसी की राय को अपने निर्णयों की कसौटी बना लें, तो हमारा जीवन दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाएगा। आलोचना हमें सिखाती है श्रोताओं कि अपनी पहचान और अपने लक्ष्य हमें खुद तय करने होंगे। जब हम बार बार आलोचना का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य से नहीं दिखते हैं, तो हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति विकसित होती है, और ये शक्ति हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है, जैसे कि करण को रखा। आलोचना की शिक्षा यह भी है श्रोताओं कि विकास हमेशा असहज होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी का दबाव सहना पड़ता है, वैसे ही व्यक्ति को बेहतर बनने से पहले आलोचना का सामना करना पड़ता है। जो दबाव से टूट जाता है वो आगे बढ़ नहीं पाता, और जो दबाव सह लेता है वही ऊंचाई छूता है। तो श्रोताओं, आलोचना हमारी पहचान नहीं होती। लोग हमारे एक काम, एक विचार या एक प्रयास की आलोचना करते हैं, पूरे व्यक्तित्व की नहीं। जब हम इस अंतर को समझ ले श्रोताओं, तब आलोचना हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। इसलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि आलोचना से डरना नहीं है, आलोचना में डूबना नहीं है, बल्कि आलोचना से सीखकर आगे बढ़ते रहना है। और जो आलोचना को गुरु बना लेता है, वह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर लेता है, जैसे कि करण ने की। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और इससे हमें जो शिक्षा मिली वो भी मैंने आपको बताई। अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहेंगे, ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वांगथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
5: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके,
6: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
7: होवे भाइयों बहनों, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
6: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
7: होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुए।
6: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, मां जंगल थकी जरूर बोली में रिश्तों है, जे जंगल में हमसे हैं ई उन्हें रक्षा करे हैं। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास में असली पहचान है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, मेहनत की मिट्टी में जब उम्मीद का बीज बोया जाता है तभी सफलता की फसल तैयार होती है। जी हाँ, किसान केवल फसल नहीं उगाता, वह आने वाले कल की उम्मीद उगाता है। मौसम चाहे जैसा भी हो, किसान का हौसला खेत की तरह हमेशा हरा रहे। मिट्टी से जुड़ी मेहनत कभी छोटी नहीं होती, यही मेहनत समाज का पेट भरती।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM पर। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान को लेकर अपने नियत समय पर एक नई शख्सियत के साथ में। जी हाँ श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम बात करने वाले हैं हमारे गांव की, हमारे मिट्टी की और उन लोगों की जिनकी मेहनत से हमारे घरों तक अन्न पहुंचता है। आज के हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक किसान जो खेती को केवल रोजगार नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन मानते हैं। खेत में बीज डालने से लेकर फसल को तैयार करने तक किसान कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन हर मौसम में उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से खेती में कौन सी ऐसी चुनौती है जिसे दूर करने के लिए उन्होंने किसानों के लिए कुछ सोचा है, और वो जो तरीका किसानों को बताने वाले हैं वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान के जीवन परिचय को। सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागर रेडियो परिवार में। सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं। तो जैसा कि सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं बुंदेलखंड के जिला ललितपुर का रहने वाला हूँ। जो पहले झांसी जिला था, अब ललितपुर है, और गांव का रहने वाला हूँ। ग्राम भैलोनी लोध है, पोस्ट भी वही है, और खेती मेरा पेशा है। और मेरा जन्म 1947 का है, नवंबर का, और मेरी शिक्षा 11th पास मैंने 1966 में की है। मध्य प्रदेश टीकोण हमारे बॉर्डर पर लगा हुआ है। हमारा जिला ललितपुर मध्य प्रदेश से ऐसे कवाड़े जैसे श्रीलंका चारों ओर समुद्र से घिरी है।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप आपके जीवन परिचय के बारे में हमें बता रहे हैं, तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी का बचपन बहुत अभाव में रहता है, किसी का बचपन बहुत अच्छे से गुजरता है, तो आपका बचपन कैसा रहा?
1: मेरा बचपन तो ठीक रहा। मैं जमींदार परिवार से हूं, चार भाई हैं हमारे, पिताजी चार भाई थे, और लेकिन उस वक्त शिक्षा का ज्यादा वो नहीं था, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कॉलेज में गया लेकिन आगे नहीं पढ़ सका 11th के बाद। और शिक्षा हमारी BSc पार्ट वन हम पूरा नहीं किया 11th के बाद, और कोई कॉलेज वगैरह हमारे इधर नहीं थे, इसलिए मध्य प्रदेश में जाना पड़ा।
0: बिल्कुल।
1: और बचपन हमारा ठीक से, फिर इसके बाद जब पढ़ना छोड़ा तो हमने 61 में, जब महानगर झांसी में ट्रैक्टर के डीलर नहीं थे उस जमाने में, मैंने 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर लेके खेती शुरू की और एक अच्छे किसानों में से था।
0: बिल्कुल।
1: 1987 में ये वक्त आया तो हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, चार भाई अलग हुए, तो बिजली एक मोटर हमारे हिस्से की थी वो बस्ट हुई, जली नहीं बल्कि, तो फिर हमने ये नेचर गिफ्ट है कि जो हमें एक इनोवेशन का आइडिया दिया जिसका मुझे पेटेंट भी प्राप्त हुआ, और वो एक आविष्कार यूपी नहीं, इंडिया नहीं, एशिया नहीं, संपूर्ण विश्व में अनोखा माना जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप विश्व में कभी सबसे पहले हमने चलाया, और बिना डीजल बिना बिजली के पानी लिफ्ट करके लिफ्ट कैनाल भी सबसे पहले चलाई, इसका रिकॉर्ड है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आपकी 11th के बाद पढ़ाई छूट गई थी, तो फिर आपके जीवन में आपने क्या किया, किस तरीके से आप इस मुकाम तक पहुँचे?
1: खेती करते करते ये तो जैसे नेचर कवि को कविता लिखने का विचार देता है, इनोवेटर को इन्वेंशन का विचार देता है। तो हमारे गांव के पास से नदी बहती है, उसमें से पानी कल कल कर हुआ बहता है, तो उसमें ये आइडिया है, एक खिड़की पत्तों की बना के हम बचपन में खेलते थे, उसी को हमने लकड़ी का एक वाटर व्हील बनाया, उससे हमने फिर चल के दो पंप एंटी क्लॉकवाइज चलाए, साइंटिस्टों का तांता लगा, वहाँ से केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल जो ICR का इंस्टीट्यूट है आए, फिर IIT दिल्ली के भी स्टूडेंट प्रोफेसर कैंप लगा के रहे, उसको टेस्ट किया गया और वो चीज आज आगे गई।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको नेचर से कई सारी चीजें अपने आप से करने का मौका मिला, और कहीं अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर उस चीज को देखने भी आए हैं, तो यहीं सर अब मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने जीवन में बदलाव कैसे लाया, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिला था, तो इस सपोर्ट को न मिलने के बावजूद भी आपने इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया और इस मुकाम तक पहुंचे?
1: हम पहले से संपन्न परिवार से व्यक्ति थे, तो जैसे नशे में एक जुनून होता है वो है, तो हम अपने बल पे उसको किए। हमारा भाई तो गाड़ियां मेंटेन कार के लेतपुर में शहर में रहते, लेकिन हमने ऐसा कुछ ना करके अपनी सारी संपत्ति अपना जीवन इसमें झोंका।
0: बिल्कुल। तो सर आप और क्या क्या करते हैं अपने?
1: हम कुछ नहीं करते, खेती के लिए हम इसी इनोवेशन में लगे थे, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम 80 साल के हो चुके, अब हमारा अंत है।
0: बिल्कुल।
1: और ये टेक्नोलॉजी आप सबको हम किसी को भी देने को कि भाई करो इसको जनहित में जो कर सकते। हमको अमेरिका ने 91 में फेलोशिप दी और वो कहते हैं इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक। थॉमस अल्वा एडिसन तो चले गए, बिजली का बल्ब बना गए, लेकिन आज उसका लाभ सारे लोग ले रहे। तो ऐसे ही है कि वो सपोर्ट इतनी देते हैं कि हम आप तक आ जाएं, हमारी बात आप सरकार शासन तक पहुंचा दें। तो इस हिसाब से उन्होंने हमें इतना ही फेलोशिप दिया 91 में। उसमें भी हम ना करना पड़ा दूसरों की तरह, भेदभाव अपने देश में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ये है कि वो कल्याणकारी है, तो हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका लोग हमने बनाया है, आप उसका लाभ दूसरों को दिला सकते हैं तो दिलाएं।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप सर बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपने बलबूते पर ही इन सारी चीजों को किया है, तो आप आपके जीवन में क्या करना चाहते थे, आपके सपने क्या थे?
1: यही था कि हमारे यहाँ डीजल इंजन 4-4, 5-5 लगा के लोग बूस्टर पंप कहते जैसे, और 4-4 लीटर प्रति घंटे का डीजल खर्च करके सिंचाई करते, उसमें किसान को लॉस होता था। अब सरकार का तो मकसद है डीजल बचाओ, बिजली बचाओ, और डीजल की आयात के ऊपर होने वाली विदेशी मुद्रा भी बचाओ और प्रदूषण बचाओ, तो ये तो इसमें सारी बचत का मामला है। तो हमने इसको एक अपना काम मान लिया, धर्म बना लिया कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जन कल्याणकारी काम है। तो जितना जो सपोर्ट जिसका मिला वो किया, लेकिन हम तो बिना डीजल बिजली के जो जमीन बंजर जमीन थी, बकरियां चरती थी, अनकल्टीवेटेड बैरन लैंड, उसमें हरियाली की सैकड़ों हेक्टेयर में।
0: बिल्कुल। तो सर ऐसी कौन सी चीज है खेती से जुड़ी जो आप हर किसान भाई तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: अभी तो हमारा ये कि भाई उनके सिंचाई साधन, जो आदमी जहाँ डीजल फूंक रहा है या बिजली है, बिजली की वजह से मैंने आपके इसी बांसवाड़ा में देखा कि कई लिफ्ट कैनालें बनी हैं, लेकिन पता लगा कि वो एक सीजन ही चल सकी, आगे वो बंद हैं, या तो ट्रांसफार्मर जल गया, बिल जमा नहीं हुआ, एक समस्या है। लेकिन हमारा ये है कि किसान को सिंचाई की सुविधा मिले, तो वो भी बिना डीजल बिजली से अच्छा क्या, तो हम एक आदमी एक ही काम कर सकता है।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें हमारी खेती को ऐसा बनाना है जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी खेती के कार्य अच्छे से हो सके।
1: डीजल माने सिंचाई सुविधा ही किसान को चाहिए, मुख्य चीज ये है।
0: बिल्कुल।
1: अब सिंचाई नहीं है तो खेती कैसे होगी? तो उसके लिए ही हमने प्रयास किया कि लोगों को सिंचाई जितनी हम जुटा सकें, शासन तो जुटाता भी है, नहरें चलती हैं, कई जगह ये है कि नहर नीचे है, खेत ऊपर है, तो भी उसको डीजल इंजन लगाना पड़ते, हमने यहाँ देखा है नहरों पे।
0: बिल्कुल।
1: तो उससे मुक्ति दिलाना हमारा मुख्य लक्ष्य रहा।
0: बिल्कुल। तो सर आपने वागड़ क्षेत्र में कौन कौन सी खेती से जुड़ी चीजें देखी है जो आप यहाँ की विशेष है और आगे कई लोगों को उसके बारे में बताना चाहेंगे?
1: यही कहते हैं कि रबी फसल में लोग जो जहाँ डीजल इंजन लगाना पड़ते तो वो ना लगाना पड़े, जहाँ नदी नाले बह रहे हैं और सिंचाई का साधन नहीं है, तो इस तकनीकी से हमारे जो आविष्कार हमारा मंगल टरबाइन, उसके द्वारा लोग पानी पहुंचा सकते हैं अपने खेतों में। अब उसमें खुद किसान अकेला नहीं कर सकता, वो कम्युनिटी बेनिफिट कुछ सैकड़ों हेक्टेयर सीस्ता, तो सरकार को इसमें मदद करना चाहिए उनकी।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर आप बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं, तो अब मैं आपकी जिंदगी का कुछ ऐसा पड़ाव जहाँ पर आप हताश हुए हो, निराश हुए हो, और उस स्थिति से आपने अपने आप को संभाला और आगे बढ़े।
1: जी, वो एक कहानी अलग बनती है। मेरा पॉलिटिकल भी क्षेत्र रहा पहले, 74 में अमेरिका में डबल अपने जिले में लड़ा दोनों कॉन्स्टिट्यूएंस, इसके बाद हमारा ये जीवन मुड़ गया, तो क्या हम भ्रष्टाचार विरोधी नंबर वन है? वो लंबी बात बन जाएगी।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप आपके जीवन परिचय से हमें रूबरू करा रहे हैं, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे समाज में बदलाव आए और समाज जो है वो अपनी अच्छी राह पर पहुंचे?
1: समाज को यही कि भाई खेती जहाँ जो कर रहे हैं लोग, परंपरागत खेती को भी अपनाते रहें, नई तकनीकी को भी अपनाते रहें। आपकी संस्था भी है बागधारा, जो भी वो किसानों के लिए करें, उनका सहयोग लेकर इसका लाभ उठाएं।
0: बिल्कुल सर, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में किसान मेहमान से हमारी बातचीत हुई और हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि खेती सिर्फ खेत में काम करने का नाम नहीं है, इसके पीछे अनुभव, मेहनत, धैर्य, प्रकृति की समझ और लगातार सीखने की भावना जुड़ी हुई है। जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से किसानों को सिंचाई की सुविधा ढंग से मिलना जरूरी है और अगर वो सिंचाई उन्हें ढंग से नहीं मिल पाती है तो किस तरीके से उन्हें नुकसान हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत जो है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, जिस हाथ में मिट्टी लगती है वही हाथ हमारे जीवन में अन्न और खुशहाली लाता है। इसी सकारात्मक सोच और किसान के सम्मान के साथ अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम हमारे मेहमान वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरा ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, गांधी जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़ी शक्ति या बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा विचार, एक दृढ़ संकल्प और अहिंसा का रास्ता भी समाज में बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है।

0: साथियों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन को लेकर अपने नियत समय पर राष्ट्रपिता प्रकरण के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है कि यूं तो असहयोग आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व ही स्वयं गांधी जी ने संभाला था और उसे स्थगित करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने माथे पर ली थी।
1: बिल्कुल,
0: देश के एक कोने चोरी चोरा में हुई हिंसा का दायित्व स्वयं पर लेकर उन्होंने उपवास किए थे। आंदोलन स्थगित करने से देश में असंतोष की जो लहर उठी थी, कशिश, उसका लाभ लेकर अंग्रेज सरकार ने गांधी जी की धर पकड़ की और उन्हें 6 वर्ष की जेल सजा सुना दी थी। उन्हें आंदोलन से अलग करने की अथवा उनकी लोकप्रियता में वर्षों के वियोग से कमी लाने की अंग्रेजों की उमंग इससे कामना नहीं हो पाई।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी को अपनी जेल में मरने देने जितने नैतिक हिम्मत अंग्रेज सरकार में नहीं थे। अतः अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद उन्हें अधिक समय जेल में न रख कर छोड़ दिया गया था। जेल से छूटने पर कांग्रेस में मतभेद और देश में सांप्रदायिक दंगों का वातावरण था।
1: बिल्कुल,
0: छूट कर जाने के अल्पकाल में ही सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का अनशन करके और उसके बाद परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच समझौता करवा कर गांधी जी केवल कांग्रेस को ही नहीं वरन पूरे देश को सही रास्ते पर लाए थे। जब जब भी आंदोलन में ज्वार आता अथवा जब जब भी नया आंदोलन छेड़ने की बारी आती, तब तक कांग्रेस को गांधी जी की याद आती। बल्कि आंदोलन के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करे और पूरे देश को अपने साथ रख कर चली, ऐसे बुजुर्ग कांग्रेस के पास गांधी जी ही थे। बड़े आंदोलनों के बीच वाइकोम, बोरसद, बारडोली जैसे स्थानों पर भी पूरा देश जिसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा, ऐसे सत्याग्रह चलते रहे। यज्ञ की अग्नि कभी शांत नहीं हुई और गांधी जी ने जरा फूक मारी कि आग की लपेटे आकाश में छूने लगती।
1: बिल्कुल अंजलि जी, श्रद्धा साथियों, 1930 का युवा कांग्रेसियों का उत्साह तो ऐसा था कि गांधी जी को अपने गिरफ्त में ले लें। सुभाष बाबू जैसे उत्साही नेताओं ने तो अंजलि जी, जब कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा, तब एक वैकल्पिक समांतर सरकार ही गठित की जानी चाहिए ऐसा संशोधन रखा था। कांग्रेस को भरोसा था कि देश की नब्ज तो गांधी जी ही परखते हैं, अतः सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित हुआ और अध्यक्ष जवाहरलाल जी ने गांधी जी से उसका नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया।
0: बिल्कुल
1: साथियों, गांधी इरविन मंत्रणा के समय कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी दिल्ली में ही बैठती। गांधी जी आधी रात को आकर भी कार्यकारिणी के समक्ष उन दिनों की चर्चा का विवरण प्रस्तुत करते। गांधी जी जिन निर्णयों की तरफ आगे बढ़ रहे थे उस बारे में कार्यकारिणी भी मतभेद पे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे मुख्य नेताओं के तो अलग अलग मुद्दों को लेकर गांधी जी के साथ मतभेद थे। दोनों को गांधी जी की होशियारी के प्रति विश्वास था। दोनों को इस बात का भी बराबर एहसास था कि देश की नब्ज जिसे गांधी जी पहचान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पहचान सका।
0: बिल्कुल,
1: दोनों में गांधी जी द्वारा जो समाधान तय किया जाए उसके प्रति पूर्ण वफादारी और सच्चाई के साथ क्रियान्वित करने की सामर्थ्य भी थी।
0: बिल्कुल कशिश, गोलमेज सम्मेलन के समय वैसे तो सीधे युद्ध लड़ने नहीं जाना था। कूटनीतिक विचार विमर्श में गांधी जी से बड़े चढ़े लोग भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस को यह भान था कि गोलमेज सम्मेलन भी आखिर तो युद्ध के अध बीच ही हो रहा था। युद्ध के समय नेतृत्व कर सके ऐसी आवाज एक ही व्यक्ति की थी और वो थे गांधी जी।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातों को जान रहे हैं अंजलि जी, ये बातें आगे भी हमारी ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी यहाँ मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि हम कार्यक्रम में सबके गांधी राष्ट्रपिता प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, और जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि युद्ध के समय नेतृत्व कर सके ऐसी आवाज एक ही व्यक्ति की थी। उस समय अंग्रेजों के सामने एक ही स्वर प्रस्तुत होना चाहिए था, भिन्न भिन्न स्वर नहीं। यह एक स्वर तो गांधी जी का ही हो सकता है, ऐसा कांग्रेस का विश्वास था। अतः जब शाशा के निमंत्रण और पसंदगी से वर्षा ऋतु में उग जाने वाली घास की तरह कई कई दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से सम्मेलन भरा हुआ था, तब देश के सबसे बड़े दल का वहाँ एकमात्र एक ही प्रतिनिधित्व उपस्थित था। कूटनीति के तमाम चालों के बीच भी अन्य प्रतिनिधियों और कांग्रेस सरकार की दृष्टि से भी इस खेल के खास मोर्चे पर खड़े गांधी जी की ओर टिकी थी। तमाम विरोधी भी इसी का विरोध करने में मानो बहुत रुचि ले रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: विशेष कारण यह है कि सब जानते थे कि आखिर तो इसी की आवाज राष्ट्र की आवाज है। वह विचार विमर्श असफल रहा। इंग्लैंड में गांधी जी ने वहाँ बिताए 3 माह का उपयोग गोलमेज सम्मेलन और उसकी उप समितियों में जितना किया, इससे भी अधिक इंग्लैंड की प्रजा के विविध वर्गों से मिलने में उनका दिल जीतने में किया था। 16 वर्ष बाद इंग्लैंड की पार्लियामेंट के पास ऐसा निर्णय करने के पीछे एक बड़ा तत्व गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी ने इंग्लैंड की जनता का दिल जीतने का जो काम किया था वह था।
1: बिल्कुल अंजलि जी। श्रोता साथियों, गांधी जी भारत आए, उनके ही शब्दों में कहें तो खाली हाथ पर मेले हाथ नहीं। फिर 2 वर्ष तक चलने वाला लंबा आंदोलन बाह्य दृष्टि से वैसे तो असफल ही गिना जाने जैसा था। इस आंदोलन ने इस देश में एक अमर राष्ट्र भावना भर दी थी, और राष्ट्र जानता था कि यह भावना जगाने के पीछे सबसे बड़ा प्रेरक तत्व गांधी ही था। यह तत्व ऐसा था जो दुर्बल को भी खड़ा करके त्याग बलिदान के लिए तैयार कर दे। यह तत्व ऐसा भी था साथियों, जो राष्ट्र को अपनी छोटी छोटी गलतियों और पापों के प्रति सजग कर सके, राष्ट्र की अंतरात्मा का विवेक जगा सके। इस अवधि के दौरान गांधी जी के एक उपवास ने देश में अस्पृश्यता को अप्रतिष्ठित कर दिया अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: दूसरे उपवास ने सत्याग्रहियों को अंत आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि करने की प्रेरणा दी। दोस्तों, इस काल के दौरान गांधी जी की यात्रा ने संपूर्ण देश में फिर से चेतना का संचार कर दिया। फिर एक निराशा का काल आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के मिशन की सर्वांगीण निष्फलता के बाद क्रिप्स के आने से पहले ब्रिटिश प्रचार माध्यमों ने ऐसा वातावरण खड़ा किया था मानो वह स्वराज देने के लिए ही आ रहे हो। क्रिप्स गलत तारीख का चेक देकर गया। उसके बाद देश में पुनः निराशा घर कर गई। घर आंगन में बजने वाले महायुद्ध के नगाड़ों ने इसमें निराशा की बाढ़ ला दी। भारत छोड़ो की गांधी जी की एक ही ललकार से यह निराशा कहीं अदृश्य सी हो गई अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: फिर वापस निराशा आई। गांधी जी के आगा खान महल के 21 दिनों के उपवास में इस निराशा के संबंध में स्वयं कुछ न कर सकने को लेकर लाचारी हेतु चित्कार था।
0: बिल्कुल कशिश, शिमला कॉन्फ्रेंस के समय गांधी जी सदस्य के रूप

0: राष्ट्र मानने में भी बुरा लगता हो, उन्हें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने में भी बुरा लगता हो तो यह नितांत स्वाभाविक है, बल्कि उनकी समग्र विचारधारा के प्रति यही सुसंगत है कि यही कहना समीचीन होगा कि इस राष्ट्र को मात्र एक धर्म के नागरिकों तक ही जो सीमित करते हैं, वे यदि ऐसा कहना चाहते हो कि गांधी जी ऐसे संकुचित राष्ट्र के राष्ट्रपिता नहीं थे, तो उनकी बात में बेशक तथ्य है और ऐसा जरूर मानना पड़ेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने ढेर सारी बातें श्रोता साथियों से की राष्ट्रपिता प्रकरण को लेकर, अगले रविवार को हमारे श्रोता साथियों से हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ में। हम जानेंगे गांधी एक कुशल व्यूह रचनाकार के बारे में, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपरो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपरो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपरो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपरे भाई बोन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा आपरू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नू जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नू मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा धकी दोस्ती करवी है।
6: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
6: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
6: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: जयवरे ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला निष्पक्ष थे हैं, वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं ना जंगल थकी जरूर बोली में रिश्तो है, जे जंगल में हौजे हैं ई उन्होंने रक्षा करे हैं, तो आओ बोलन ही भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, मैं जंगल में भविष्य सुरक्षित करा, बोलन ही आवाज विकास में असली पहचान है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
9: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हम जब भी हाजिर होते हैं तो हमारे आपसे नई नई व्यंजन विधियों को लेकर ढेर सारी बातें रहती हैं। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी ही व्यंजन विधियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारी आपसे पहली व्यंजन विधि रहने वाली है मूंग दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी। जी हाँ श्रोता साथियों, जब मौसम में हल्की ठंडक शुरू हो जाए और सुबह सुबह ठंडी हवा चलने लगी तो घर में बनी गर्मा गर्म खिचड़ी की याद आ ही जाती है। मूंग दाल की खिचड़ी हमारे घरों का ऐसा पारंपरिक भोजन है जिसे दादी नानी अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया करती थी।
10: कम मसाले, साधारण सामग्री

पर बनाने में आसान होने के कारण ये भोजन आज भी घर घर में पसंद किया जाता है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और इसे बनाने के लिए हम कौन सी विधि अपना सकते हैं, तो कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले व्यंजन विधि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आज हमारी आपसे पहली व्यंजन विधि रहने वाली है मूंग की दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि जब मौसम में हल्की ठंडक शुरू हो जाए और सुबह सुबह ठंडी हवा चलने लगी तो घर में बनी गर्मा गर्म खिचड़ी की याद हमें आई जाती है। खिचड़ी को खास बनाने की बात यह है श्रोता साथियों कि इसमें दाल और अनाज दोनों का मेल होता है। इसे गरम गरम परोसा जाए और साथ में थोड़ा सा घी, दही, छाछ, पापड़ या अचार हो तो साधारण खिचड़ी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो श्रोता साथियों, जानते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो श्रोता साथियों, एक कप हमें चावल चाहिए होगा, 1.5 कप हमें मूंग दाल चाहिए होगी, 1 से 2 चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच 1 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है, 1 टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ डालना है, 1 मिर्च बारीक कटी हुई, 4 से 5 कप आप पानी डाल सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। चाहो तो श्रोता साथियों, थोड़ी सी कटी हुई गाजर या मटर या लौकी भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये तो साथियों हमने जाना कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। यही जानते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी है। सबसे पहले श्रोता साथियों, चावल और मूंग दाल को अलग अलग या एक साथ साफ करके अच्छी तरह से हमें धो लेना है। दादी नानी के समय अनाज को साफ करना और उसमें छोटे पत्थर या कंकड़ निकालना रसोई का जरूरी काम माना जाता था। धोने के बाद श्रोता साथियों, दाल और चावल को लगभग 15 से 20 मिनट हमें भिगो कर रखना है। इससे हम देखते हैं कि खिचड़ी हल्दी और अच्छी तरह से पकती है। अब एक मोटे तले की पतली या कुकर आप ले ले, इसमें घी डालकर हल्का सा गर्म कर ले। घी गर्म होने पर श्रोता साथियों, इसमें हमें थोड़ा सा जीरा डालना है। जीरा चटकने लगे तो 1 चुटकी हींग हमें डाल देनी है। इसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर हमें हल्का सा भून लेना है। अब इसमें श्रोता साथियों, हल्दी और गुली हुई मूंग दाल और चावल हमें डालने हैं। इन्हें मसालों के साथ 1 से 2 मिनट हल्के हाथ से हमें चलाते हुए भून लेना है। पुराने समय में दादी नानी खिचड़ी को इसी तरह से घी और थोड़ा भून कर बनाया करती थी। इससे श्रोता साथियों, हम देखते देखे उसमें अच्छी खुशबू आती थी। अब इसमें श्रोता साथियों, स्वाद अनुसार आप नमक डाल लें और लगभग 4 से 5 कप पानी डाल लें। खिचड़ी को जितना नरम और पतला रखना हो आप उसी हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा पानी आप डाल सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो श्रोता साथियों, ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर लगभग 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर ले और कुकर का दबाव है वो अपने आप ही कम होने दें। अगर पतली में बना रहे हैं तो इसे धीमी आंच पर पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें। दाल और चावल अच्छी तरह से गल जाए और दोनों आपस में मिल जाए और नरम हो जाए तो श्रोता साथियों, समझिए कि आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब खिचड़ी को एक कटोरी या थाली में हमें निकाल लेना है। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी हमें डाल देना है और थोड़ा सा धनिया हमें डाल देना है। यही अगर परोसने की बात करें तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गर्मा गर्म मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ दही, छाछ, पापड़, अचार या घर की बनी चटनी परोसी जा सकती है। गाँव में कई जगह श्रोता साथियों खिचड़ी में थोड़ा सा दही डालते हैं, अचार डालते हैं या दोनों को मिलाकर भी डाल के खाते हैं। अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो श्रोता साथियों, तो उस खिचड़ी में 1 चम्मच घी डालने पर हम देखते हैं कि स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाती हैं। ये तो श्रोता साथियों हमने बात की कि हमें इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और कौन सी विधि अपनाकर बहुत ही आसान तरीके से हम इस व्यंजन विधि को अपने घर में बना सकते हैं। और अब जानते हैं श्रोता साथियों कि इस मूंग की दाल की खिचड़ी से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि मूंग की दाल की खिचड़ी को हल्का और सरल भोजन माना जाता है। इसमें चावल से कार्बोहाइड्रेट और मूंग की दाल से प्रोटीन मिलता है। दोनों को साथ खाने से भोजन में अलग अलग पोषक तत्व हैं वो शामिल होते हैं। मूंग दाल आम तौर पर श्रोता साथियों आसानी से पचने वाली दालों में गिनी जाती है। इस कारण सादा मूंग दाल की खिचड़ी कई परिवारों में तब भी बनाई जाती है जब शरीर को हल्का भोजन देने की जरूरत महसूस हो। इसमें अगर गाजर, मटर, लौकी जैसे सब्जियां हम डाल ले तो खिचड़ी में सब्जियों का पोषक तत्व है वो भी बढ़ सकता है। खिचड़ी को श्रोता साथियों, अगर हम बहुत कम तेल या बहुत कम मसालों में बनाते हैं तो ये हमारे रोज के भोजन का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि श्रोता साथियों, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है।
इसलिए श्रोता साथियों, इसे किसी बीमारी की दवा का इलाज समझकर हमें नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथियों, आपको एक और खास बात कहना चाहूंगी कि दादी माँ की रसोई में खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं बनाया जाता है। इसमें स्वाद के साथ मौसम, घर के लोगों की जरूरत और उपलब्ध सामग्री का ध्यान भी रखा जाता है। मूंग की दाल की खिचड़ी एक अच्छा उदाहरण है। घर में उपलब्ध चावल, दाल, थोड़ा सा घी और साधारण मसालों से भी स्वादिष्ट भोजन हम बना सकते हैं। इसमें न बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और न ही साथियों इसमें बहुत ज्यादा सामग्री की हमें जरूरत होती है। आज के समय में हम देखते हैं कि जब लोग जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी पारंपरिक रेसिपी हमें याद दिलाती है कि स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए हमेशा बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। सही मात्रा में साधारण सामग्री और थोड़ा सा प्यार भी काफी होता है। तो इस बार श्रोता साथियों, जब सुबह सुबह हल्की ठंड महसूस हो और मन करे कुछ गर्मा गर्म सादा और घर जैसा खाने का, तो क्यों ना बनाई जाए दादी माँ के हाथों की याद दिलाने वाली मूंग की दाल की खिचड़ी। गर्मा गर्म खिचड़ी, ऊपर से थोड़ा सा घी, साथ में थोड़ा सा दही या अचार डालकर हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और कौन सी विधि अपनाकर हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं और इस व्यंजन विधि के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ढेर सारी बातों को जाना। तो कार्यक्रम के माध्यम से ये रेसिपी तो हमारी आपसे पूरी हुई। आगे भी मैं आपको एक और रेसिपी के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमने व्यंजन विधि के बारे में जाना था कि मूंग की दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी को हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। अब यही जानते हैं कि हम घर पर मूंगफली और दही का घोटा कैसे बनाएं। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सबसे पहले साथियों, आपको मूंगफली कच्ची या भुनी हुई आप ले सकते हैं 1 कप। साथ ही आपको ताज़ा दही लेना है 2 कप। ठंडा पानी 1 से 2 कप आप ले सकते हैं आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। स्वाद के लिए श्रोता साथियों, आपको लेना है सेंगा नमक, साधारण नमक, यह स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च लेनी है 1 से 2 छोटा चम्मच। साथ ही श्रोता साथियों, स्वाद बढ़ाने के लिए आप हरी मिर्च 1 चम्मच बारीक कटी हुई आपको लेनी है। पुदीना के पत्ते लेने हैं थोड़े से। धनिया के पत्ते लेने हैं 1 बड़ा चम्मच। लहसुन की कलियां लेनी है 1 से 2 कलियां आप ले सकते हैं, अगर आपको तीखा स्वाद पसंद हो तो। तो साथियों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अब यही बात आती है हमें इसे बनाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है। तो साथियों, सबसे पहले विधि की बात हम कर ही रहे हैं तो आपको मूंगफली तैयार करनी है। अगर कच्ची मूंगफली है तो आपको उसे हल्का भून लें। अगर कच्ची मूंगफली है तो आपको उसको थोड़ा हल्का भून लेना है। भूनने के बाद ठंडा करके उसका छिलका निकाल लें। अब इसे मिक्सर में डालकर या सिलबट्टे पर दरार से पीस लें। पुराने शैली में श्रोता साथियों, इसे सिलबट्टे पर घोटा जाता था जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता था। साथ ही श्रोता साथियों, आपको दही तैयार करना है। दही को एक बड़े बर्तन में ले, उसे अच्छे से फेंट कर ले ताकि वह चिकना हो जाए। अगर दही ज्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर हमें उसे पतला कर लेना है। साथ ही श्रोता साथियों, हमें गोटा तैयार करना है। अब पीसी हुई मूंगफली को दही में मिलाएं, अच्छी तरह से चलाएं ताकि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें श्रोता साथियों, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च डालें। स्वाद बढ़ाने के लिए साथियों, आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पुदीना और धनिया डालें। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा लहसुन आप डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ठंडा ठंडा परोसें। श्रोता साथियों, इसे ठंडा पिए या आप खाएं। रोटी, बाजरे की रोटी या चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। गर्मी में इसे लस्सी या रायते की तरह भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, इस व्यंजन विधि के कई सारे लाभ हमें मिलते हैं, जैसे कि इससे हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहता है और साथ ही हमारी ऊर्जा का स्रोत भी बना रहता है, हमारे पाचन में सुधार होता है। साथ ही श्रोता साथियों, अगर हमें कमजोरी है तो ये हमारी कमजोरी को भी दूर करता है, हमारे हड्डियों के लिए फायदेमंद है। ये तो श्रोता साथियों मैंने बताया कि आपको इसके क्या लाभ मिल सकते हैं, साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। साथ ही श्रोता साथियों, इसको आप बहुत ज्यादा मात्रा में न लें। जिन लोगों को दही सूट नहीं करता वे सावधानी रखें। रात में खाने से बचें, ठंडा प्रभाव होने पर खाएं। अगर सर्दी जुकाम हो तो इसे न लें। श्रोता साथियों, यह रेसिपी खासकर गाँव में बनाई जाती है, खेतों में काम करने वाले लोग इसे ऊर्जा के लिए खाते हैं। इसे प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है। साथ ही श्रोता साथियों, इसमें कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फैट, हल्दी फैट होते हैं, विटामिन बी होता है। श्रोता साथियों, मूंगफली और दही का देसी घोटा सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं और स्वास्थ्य का संगम है। यह हमें सिखाती है कि साधारण चीजों से भी हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। तो श्रोता साथियों, इस गर्मी में बाजार की ठंडी चीजों से दूर रहें और अपनाएं अपने घर की देसी और सेहतमंद रेसिपी। तो श्रोता साथियों, ये तो हमने जाना कि हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से मूंगफली और दही का घोटा की विधि को अपनाकर कैसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, पर जाने से पहले सुन लेते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ में हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही वो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की, आपके अपने साथी मनीषा पटेल को नमस्कार।

डॉगर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रही थी संविधान और चुनाव प्रणाली में, हमने जाना था विधान परिषद की सदस्यता और मताधिकार, किन किन भारतीयों को था मतदान का अधिकार। यही आज हम बात करते हैं राज्यों की परिषद संघ स्तर के बारे में।
1: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि, राज्यों की परिषद संघ स्तर को लेकर हम बात करें तो राज्यों की परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्यों को अपनी प्रतिनिधि चुनकर इस सदन के लिए भेजने की व्यवस्था की गई थी। भारत की सभी प्रांतीय परिषदों के लिए निर्धारित कुल 156 सदस्यों में से 150 का चुनाव प्रांतीय परिषद को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से करना था, जबकि 6 सदस्यों के चुनाव का विशेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रांतीय परिषद के 150 स्थानों में से 75 प्रतिनिधियों का चुनाव हिंदुओं और अन्य समुदाय को करना था। उन 50 प्रतिनिधियों का चुनाव मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को करना था। 4 प्रतिनिधि सिखों द्वारा चुने जाने थे।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि 6 स्थान महिलाओं और 6 स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। राज्य की परिषद के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होना था जागृति
1: जी हाँ,
0: लेकिन बेहद समिति जनसंख्या को ही मतदान का अधिकार दिया गया था। इन चुनावों में आयकर चुकाने वाले जमींदार भूस्वामी, आवासीय संपत्ति रखने वाले, साक्षर प्राथमिक मैट्रिक स्तर की शिक्षा हासिल कर चुके, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सेवारत, सेना में काम करने वाले व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे।
1: जी हाँ। इसी के साथ साथियों, इस परिषद के लिए भारतीय रियासतों के राज प्रमुख या शासक अपने प्रतिनिधि मनोनीत कर सकते थे। वही रियासती संघ के राज्यों की परिषद के लिए अपने प्रतिनिधि भेज सकते थे। अंजलि, जिन्होंने भारतीय संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल होना स्वीकार कर लिया हो, बड़ी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साथियों, हैदराबाद को 5, मैसूर, कश्मीर, ग्वालियर, बड़ौदा को 3-3 स्थान मिले, लेकिन छोटी रियासतों को समूह बनाकर स्थान आवंटित किए गए थे।
0: जी जी।
1: मसलन जावरा और रतलाम को एक स्थान बड़वानी, अलीराजपुर और शाहपुरा को मिलाकर एक स्थान, पोरबंदर और मोरवी को एक स्थान दिया गया था।
0: जी जी।
1: एक तरह से छोटी रियासतों को समूह में रख दिया गया था। इसके साथ ही ये व्यवस्था की गई थी कि उन्हें आपसी सहमति से राज्यों की परिषद के लिए सदस्य का चुनाव करना है। बड़ी रियासतें जिन्हें अकेले अपना सदस्य चुनना था, उनका कार्यकाल 9 वर्ष था, जबकि साझा सदस्य चुनने वाली रियासतों के समूह के सदस्यों का कार्यकाल 3-3 वर्ष तय किया गया था।
0: जी बिल्कुल।
1: इतना ही नहीं, समूह में मिलकर सदस्य चुनने वाली रियासतें बारी बारी से अपने सदस्य परिषद में भेज सकती थी। साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा चयनित सदस्य की नियुक्ति या किसी भी तरह के संदेह या विवाद की स्थिति में गवर्नर जनरल को नियम बनाने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें संघ परिषद की, तो श्रोता साथियों, संघ परिषद यानी फेडरल असेंबली के लिए कुल 375 स्थान निर्धारित किए गए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 250 सदस्य और भारतीय रियासतों को 125 सदस्य चुनने थे।
1: जी हाँ।
0: भारतीय रियासतों को अपने प्रतिनिधि वैसे ही चुनने थे जागृति जी, जैसे कि राज्यों की परिषद के लिए तय किया गया। कुछ रियासतों ने विधान परिषद की समान व्यवस्था स्थापित करनी शुरू कर दी थी, अतः वे भी चुनाव का तरीका अपना सकती थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को श्रोता साथियों संघ परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करना था।
1: जी हाँ।
0: दूसरे अर्थों में प्रांतीय परिषद के सदस्य संघ परिषद के चुनाव में प्राथमिक मतदाता थे। संघ परिषद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई थी। कहना चाहेंगे जागृति जी कि ब्रिटिश भारत की प्रांतीय परिषदों को जिन 250 प्रतिनिधियों को चुनना था, उनमें से 105 स्थान सामान्य श्रेणी के थे।
1: जी हाँ।
0: उनमें 19 स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था के आधार पर सिखों के लिए 6, मुस्लिमों के लिए 82, एल्गो इंडियन के लिए 4, यूरोपियन समुदाय के लिए 8, वाणिज्य और औद्योगिक समूह के लिए 11, भूस्वामियों के लिए 7, मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 9 स्थान तय किए गए थे।
1: बिल्कुल अंजलि, प्रांतीय परिषदों में सिखों और मुसलमानों के चुनाव के लिए केवल सिख और मुस्लिम प्रतिनिधि ही मतदान कर सकते थे। संघ परिषद के लिए निर्धारित वाणिज्य और उद्योगों, भूस्वामियों, मजदूरों के प्रतिनिधियों का चयन इन्हीं वर्गों की सभाओं संगठनों को करना था। संघ परिषद के चुनाव के लिए प्रांतीय परिषद के सदस्यों प्रतिनिधियों को प्राथमिक मतदाता यानी कि प्राइमरी इलेक्टोरेट माना गया था। ये प्राथमिक मतदाता संघ परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए शक्ति संपन्न थे। साथियों, अगर प्रांतीय विधानसभा और विधान परिषद को लेकर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में भी दो सदनों की व्यवस्था की गई थी अंजलि, जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता था।
2: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी बात करें, सभी प्रांतों की विधानसभा के लिए कुल 1585 स्थान तय किए गए थे जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव से भरा जाना था। यहाँ सामान्य स्थान सिखों मुस्लिम समुदाय, भारतीय ईसाइयों, एल्गो इंडियन, यूरोपियन समुदाय, जमींदार, विश्वविद्यालय, उद्योग और वाणिज्य तथा महिलाओं के लिए स्थान निर्धारित थे। विधान परिषद में कुल 517 स्थान निर्धारित थे श्रोता साथियों, जिनमें सामान्य मुस्लिम, यूरोपीय, भारतीय ईसाई के लिए स्थान तय थे।
1: जी हाँ।
2: इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने के लिए मुस्लिम, यूरोपियन या भारतीय ईसाई मतदान नहीं कर सकते थे।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह मुस्लिम प्रतिनिधि स्थान के लिए यूरोपियन मतदान नहीं कर सकते थे। यानी सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव सामान्य वर्ग के मतदाता, मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम मतदाता, एल्गो इंडियन प्रतिनिधि का चुनाव एल्गो इंडियन मतदाता और भारतीय ईसाई का चुनाव भारतीय ईसाई ही कर सकता था।
1: जी हाँ। तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, ये बातें हमारी निरंतर यही बनी रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: जी बिल्कुल।
3: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, गीत से पहले हम जान पा रहे थे प्रांतीय विधान सभा और विधान परिषद के बारे में।
1: जी हाँ।
0: यही अगर प्रांतीय विधानसभा के चुनाव को लेकर हम बात करें अंजलि, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की मकसद से प्रांतीय परिषदों के चुनाव और गठन की व्यवस्था की गई थी।
1: जी बिल्कुल।
0: ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत, मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध, और 4 आयुक्त नियंत्रित क्षेत्र ब्रिटिश, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग थे। 11 प्रांतों की विधान परिषद के लिए कुल 1585 विधायी स्थान निर्धारित थे। इसी के साथ साथ प्रांतीय परिषद में प्रतिनिधित्व का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया था।
1: जी जी।
0: सामान्य स्थान पिछड़े क्षेत्र और पिछड़ी जनजातियाँ, सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय, यूरोपियन समुदाय, भारतीय ईसाई समुदाय, वाणिज्य, उद्योग, खनन और वाणिज्य भूस्वामी विश्वविद्यालय और मजदूर।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें मतदान के अधिकार की, तो श्रोता साथियों, प्रांतों की विधानसभा के लिए मतदाताओं की सूची कुछ पात्रता शर्तों के आधार पर बनाई गई थी।
0: जी हाँ।
1: अलग अलग प्रांतों में मतदाता होने के लिए अलग अलग पात्रताएं थी। यही बात करें सामान्य बुनियादी पात्रता की, तो श्रोता साथियों, मद्रास प्रांत में जो व्यक्ति विधान परिषद क्षेत्र में बीते वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिन निवासरत रहा हो, जबकि बम्बई प्रांत में व्यक्ति के निवास की अवधि 180 दिन, संयुक्त प्रांत और पंजाब में व्यक्ति का स्थानीय निवासी होना माना गया था।
0: बिल्कुल। यही अगर कर भुगतान के आधार पर पात्रता को लेकर हम बात करें, तो मद्रास प्रांत में जिस व्यक्ति ने मद्रास मोटर व्हीकल टैक्सेशन अधिनियम 1931 के तहत वर्ष भर का कर अदा किया हो, या मद्रास नगर पालिका अधिनियम 1919, मद्रास जिला परिषद अधिनियम 1920 या सैनिक छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत प्रांतीय व्यवसाय कर अदा किया हो या आय कर अदा किया हो, बम्बई संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत और बरार में भी आय कर भुगतान को पात्रता माना गया। बंगाल प्रांत में भी बंगाल मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1932 के तहत कर देने वाला व्यक्ति पात्र माना गया। बिहार में जिस व्यक्ति ने कम से कम 1.5 रुपए का कर चुकाया हो, उसे मतदान का अधिकार दिया गया।
1: जी जी।
0: उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी आय कर नगर निकाय कर के आधार पर पात्रता तय की गई थी।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें संपत्ति के आधार पर पात्रता की, तो श्रोता साथियों, जो व्यक्ति मद्रास अस्टेंट्स लैंड अधिनियम 1908 के अंतर्गत बीते फसली वर्ष के आखिरी दिन की पंजीकृत भूस्वामी, ईमानदार, रैयतवारी, पट्टेदार हो, या बीते फसली वर्ष में सरकार को भूमि किराए दी हो, या बीते फसली वर्ष में मालबार टेनेसी एक्ट में निश्चित अवधि के लिए कनामदार या कुछ ही कनामदार रहा हो, या संयुक्त भूधारिता होने पर जिसका वार्षिक किराया 1000 रुपए या अधिक रहा हो।
0: जी हाँ।
1: संयुक्त प्रांत और पंजाब में व्यक्ति के पास इतनी जमीन हो जिसका भू राजस्व सालाना कम से कम 5 रुपए चुकाया जाता हो। पंजाब में अगर किराए पर 6 एकड़ सिंचित या 12 एकड़ असिंचित जमीन ली हो, पंजाब प्रांत में ऐसी अचल संपत्ति का मालिक हो जिसकी कीमत 2000 रुपए से कम न हो।
0: जी हाँ।
1: उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 6 एकड़ सिंचित या 12 एकड़ असिंचित जमीन का स्वामी हो या कम से कम 10 रुपए के भू स्वामी की श्रेणी में आता हो। सिंध प्रांत में व्यक्ति के पास कराची में अपना या किराए का घर हो या किसी नगर में कोई घर हो।
0: जी हाँ बिल्कुल अंजलि। अगर पात्र व्यक्ति नाबालिग हो, अगर इसको लेकर हम बात करें, तो अगर व्यक्ति किसी ऐसे नाबालिग का अभिभावक है जो यदि वयस्क होता तो उसे मतदान का अधिकार होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: साक्षरता को लेकर हम बात करें, तो मद्रास में साक्षर व्यक्तियों को भी मतदान का पात्र माना गया है, लेकिन बम्बई, सिंध, बिहार और बंगाल में मैट्रिक उत्तीर्ण या इसके समकक्ष शिक्षा होनी जरूरी माना गया है।
1: जी बिल्कुल।
0: जबकि संयुक्त प्रांत में अपर प्राथमिक स्तर की शिक्षा को जरूरी माना गया है, पंजाब प्रांत में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा जरूरी मानी गई है।
1: जी जी।
0: यही अगर ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार में सेवारत को लेकर हम बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार से सेवानिवृत्त है, पेंशन पाता है या ब्रिटिश सेना में किसी सैनिक की विधवा भी मतदान की पात्र मानी गई है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें संविधान सभा में मानवाधिकार पर चर्चा की, तो श्रोता साथियों, किसी भी देश में मतदान सत्ता में भागीदारी का पहला कदम है क्योंकि सरकार जनता के मत से चुनी जाती है। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में भारत के संविधान की उद्देशिका को अंतिम रूप देने को लेकर बहस चल रही थी।
0: जी हाँ।
1: कहा जा रहा था कि भारत की राज्य व्यवस्था को कोई भी शक्ति और अधिकार जनता से ही मिलेंगे। भारत के लोग अपने मत के जरिए राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को उनकी नीतियों और विचारों के आधार पर चुनेंगे। जिन्हें ज्यादातर जनता मत देगी उन्हें कानून नीतियां और नियम बनाने शासन का अधिकार मिल जाएगा। उधर सरकार को व्यवस्था चलाने के लिए जनता वस्तुओं और सेवाओं का कर शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा।
0: जी हाँ बिल्कुल अंजलि, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया था, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए। बहस के दौरान ब्रजेश्वर प्रसाद ने उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों पर आपत्ति की।
1: जी बिल्कुल,
0: उनका तर्क था कि किसी विधि संबंधी विचारधारा का वास्तविक तथ्यों से कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो उस विचारधारा का कोई मूल्य नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: नेपाल सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और वह अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकती है। सोवियत रूस की सरकार को रूस के साम्यवादी पक्ष को खत्म करने की स्वतंत्रता है। इस तरह के कामों का परिणाम क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता युद्ध की ओर ले जाती है और वह साम्राज्यवाद का कारण बनती है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: साथियों संविधान सभा के कई सदस्यों खासकर रियासतों के प्रतिनिधियों को ये विचार स्वीकार नहीं था कि जनता ही राज्य को शक्ति प्रदान करेगी।
1: जी जी, इसी के साथ जागृति जी हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 जनवरी 1947 को लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पर चली बहस का जवाब देते हुए कहा था कि जनता के सर्व सत्ता संपन्न होने की कल्पना संविधान के लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव में की गई है।
0: जी हाँ,
1: वह कुछ नरेशों को पसंद नहीं है, यह आपत्ति आश्चर्यजनक है और मैं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मंत्री यदि सचमुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन पद्धति की तीव्र निंदा के लिए उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी व्यक्ति चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो यह कहना

0: योग्य नहीं किया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदान के रूप में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा।
1: जी हाँ,
0: बजेश्वर प्रसाद का कहना था कि वयस्क मताधिकार में यह पूर्व धारणा होती है कि निर्वाचक गण समझदार हैं, जहां निर्वाचक गण विवेकशील न हो वहां संसद मूलक लोकतंत्र नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: बहस से ये पता चलता है कि नागरिक के विवेकशील हुए बिना यह व्यवस्था जीवंत नहीं होगी।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, हमने जाना कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में प्रांतीय विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। अगले रविवार को हम फिर से रूबरू होंगे एक नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुए। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छांव में आपने रह हो या आपने ने कितनी शांति मिले है, जैने हवा में आपने हाल रह हो ये भी आपना थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपनी जरूरत नहीं बल्कि आपनी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा लूंगा, मैं आपनी धरती में जीवन दान डालूंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल में बदलाव की शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीन आते नाम हिरते आवे कागज केने कोने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोलो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथों मिलने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमीन आते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरो अपना भी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
2: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ एक दाड़ो स्कूल थे क्या आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध स पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदु कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

तो साथियों ये तो थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी अगली सभा में, तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी आज की संध्याकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना से। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, जिसमें आप जानेंगे महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 5:30 पर। दोस्तों, इसी के बाद अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सभी सुन पाएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में ठीक शाम 6:00। दोस्तों, फिर हमारा अगला कार्यक्रम होगा बच्चों के लिए शिक्षाप्रद व प्रेरणादायी कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 6:30 पर। साथियों, इसी क्रम में हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान से, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक शाम 7:00। इसी के बाद दोस्तों आपको रूबरू करवाएंगे गांधी जी के विचारों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हिंद स्वराज, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 7:30 पर। साथियों, फिर हम रुक करेंगे हम और हमारा संविधान कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 8:00। साथियों, इसी के बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, जिसमें हम जानेंगे कुछ स्वास्थ्यप्रद व्यंजनों की विधि के बारे में। इसी बीच कुछ फिल्मी नगमे सुनवाएंगे आपको मनोरंजन के लिए। दोस्तों, इन नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी और दर्द भरी गजलों को ठीक रात्रि 9 से रात्रि 10 बजे तक। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सभा की कार्यक्रम आराधना से।

श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने,

0: आंकड़ों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण सात जन से व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मारू नाम गिल्ली है, मैं मुँह मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घनी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाय हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ाऊंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीसी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नु दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

0: साथियों, सत्य को अपना हथियार बनाइए, अहिंसा को अपना रास्ता बनाइए और बदलाव की शुरुआत खुद से कीजिए।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की

0: गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपने नियत समय पर एक महान पुरुष के जीवन परिचय को लेकर। जागृति जी, आज का दिन हमें उस व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसी दिशा दी जिसमें संघर्ष के साथ सत्य, अहिंसा और आत्मबल को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला।
1: बिल्कुल,
0: आज हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें देश महात्मा गांधी के नाम से जानता है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि महात्मा गांधी जी के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो साथी भारत का इतिहास ऐसे महान व्यक्तित्व से भरा हुआ है जिन्होंने अपने विचारों, त्याग, संघर्ष और कर्मों से देश को नई दिशा दी, जैसा कि अभी आपने बताया। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्र भारत में ईमानदार नेतृत्व, सादगी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। दोनों ही महापुरुषों का जीवन आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि हम सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन परिचय से श्रोता साथियों को रूबरू करा रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल,
0: उनका जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर जागृति जी ऐसे सार्वजनिक जीवन तक पहुंचा जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का जीवन केवल स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी नहीं है, यह सत्य की तलाश, आत्म अनुशासन, सादगी और समाज के कमजोर लोगों के प्रति संवेदनशीलता की भी कहानी रही है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की थी। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बने। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन उनके जीवन की वास्तविक दीक्षा दक्षिण अफ्रीका में बदल गई। श्रोता साथियों, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के बारे में आपको बताएं, तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को करीब से देखा। एक घटना ने उनके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया जब उन्हें रंग भेद के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर कर दिया गया। इस अनुभव ने गांधी जी को अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया और सत्य तथा अहिंसा पर आधारित संघर्ष की पद्धति विकसित की। अंजलि, उन्होंने सत्याग्रह को अपना प्रमुख साधन बनाया। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए दृढ़ रहना और अन्याय का विरोध करते हुए हिंसा का सहारा न लेना।
0: बिल्कुल जागृति जी, सत्याग्रह का अर्थ जैसा कि आपने बताया कि विरोध करना नहीं था, सत्य का दृढ़ता से सामना करना था।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, गांधी जी का विश्वास था कि किसी गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन संघर्ष का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: ये विचार बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी दिखाई दिया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यही बात करते हैं भारत वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन की। तो गांधी जी, जागृति जी 1915 में भारत लौटे।
1: बिल्कुल,
0: भारत में आने के बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे आंदोलन ने उन्हें जनता के बीच एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया।
1: बिल्कुल,
0: आगे चलकर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वतंत्रता संघर्षों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहने दिया,

0: लोगों को भी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया था।
1: बिल्कुल अंजलि, और 1930 का दांडी मार्च गांधी जी के संघर्ष का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने नमक कानून के विरोध में साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की। इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर में नई ऊर्जा पैदा की। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका संदेश था श्रोताओं कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए और इसके लिए देशवासियों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं था श्रोताओं, उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया। वे मानते थे अंजलि कि हिंसा से प्राप्त विजय स्थायी नहीं होती है, सच्ची शक्ति सत्य आत्मसंयम और नैतिक साहस में होती है। गांधी जी स्वच्छता, ग्राम विकास, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा पर भी जोर देते थे। वे चाहते थे कि गांव मजबूत हो और ग्रामीण लोग अपने स्थानीय संसाधनों और श्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। उनका भौतिक जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में याद किए जाते हैं। हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जैसा कि अभी हमने 2 दिन पहले मनाई है, और ये दिन हमें सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और मानवता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने समाज में छुआछूत जैसी प्रथाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई और सामाजिक बराबरी पर जोर दिया था। उनका मानना था कि देश की आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि समाज के भीतर मौजूद भेदभाव और अन्याय को कम करना भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बदलाव की सबसे बड़ी सीढ़ी दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि अपने आचरण में वह बदलाव लाना है जिसे हम समाज में देखना चाहते हैं। आज हमारे सामने जागृति जी समस्याओं का रूप बदल गया है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सत्य, ईमानदारी, संवाद, स्वावलंबन और अहिंसा जैसे मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। हम अपने गांव में छोटे से शुरुआत कर सकते हैं कि बच्चों को सच बोलने की आदत सिखाएं, विवाद को बातचीत से सुलझाएं, स्थानीय चीजों और श्रम का सम्मान करें, स्वच्छता का ध्यान रखें और किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें।
1: बिल्कुल,
0: वे छोटे कदम हैं जिनसे बड़े सामाजिक बदलाव की नींव तैयार होती है।
1: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने गांधी जी के बारे में जाना कि गांधी जी का जीवन कैसा था और उन्होंने देश के प्रति क्या क्या किया।
0: बिल्कुल,
1: आगे भी हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, सादगी हो जीवन की पहचान, ईमानदारी हो सबसे बड़ा सम्मान, देश हित को रखे सबसे आगे, यही है शास्त्री जी का संदेश महान।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि गीत से पहले हमने हमारे श्रोता साथियों को गांधी जी के जीवन परिचय से अवगत करवाया था, यही लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को हम अवगत करवाते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक और बाद में राजस्व विभाग में कार्यरत थे। शास्त्री जी की माता का नाम रामदुलारी देवी था। अंजलि, शास्त्री जी का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। उनका पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के साथ शास्त्री जी शब्द को अपना लिया।
0: बिल्कुल जागृति जी, उनका जीवन ये बताता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, शिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता दे सकती है। उनके भीतर देश सेवा की भावना भी बचपन से मजबूत हो गई थी।
1: बिल्कुल,
0: महात्मा गांधी के विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से शास्त्री जी प्रभावित हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। उनका जीवन जागृति जी संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया।
1: बिल्कुल,
0: वे उन नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल राजनीतिक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी के रूप में भी देखा था।
1: बिल्कुल अंजलि, यही जय जवान जय किसान के बारे में बात करें तो शास्त्री जी ने देश के सैनिकों और किसानों के महत्व को समझते हुए प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस नारे में भारत की शक्ति की दो महत्वपूर्ण आधार दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान और देश के लोगों के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान। शास्त्री जी ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। श्रोता, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने देश का नेतृत्व किया। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने देशवासियों का मनोबल बढ़ाया और एकता का संदेश दिया। अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर रहते हुए भी उनका जीवन बहुत ही साधारण था। उनका मानना था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को अपने आचरण से लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है श्रोताओं कि महान बनने के लिए धन दिखावा या सुविधाएं आवश्यक नहीं है, महानता व्यक्ति के चरित्र कर्म और विचारों से आती है।
0: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में देश को खाद्यान्न की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने लोगों से कठिन समय में संयम और सहयोग की भावना रखने की अपील की थी। उनका अपना जीवन भी सादगी का उदाहरण था। वे दिखावे के बजाय, जैसा कि आपने बताया, कि जिम्मेदारी और अनुशासन को महत्व देते थे। अगर हम शास्त्री जी के जीवन को गांव से जोड़कर देखें तो उनकी सोच आज भी कई स्तरों पर समझी जा सकती है। किसान मेहनत करता है तो हमें खेती और श्रम का सम्मान करना चाहिए, अन्न की कीमत समझनी चाहिए और भोजन की बर्बादी से बचना चाहिए। गांव के विकास में हर व्यक्ति की भूमिका होती है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, स्वास्थ्यकर्मी हो या युवा। हर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करे तो समाज मजबूत होता है। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि शास्त्री जी का जीवन हमें यह भी समझाता है कि देश सेवा केवल बड़े पद पर बैठकर नहीं होती, अपने काम को जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना भी देश सेवा का एक रूप है।
1: बिल्कुल अंजलि, 1966 में शास्त्री जी सोवियत संघ के ताशकंद गए, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के लिए बातचीत हुई। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन भले ही अपेक्षाकृत छोटा रहा श्रोता साथियों, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों से भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी। हम कहना चाहेंगे कि दो महान व्यक्तित्व, दो अलग अलग दौर और एक समान उद्देश्य, देश की सेवा और समाज का कल्याण। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा की राह दिखाई, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत इस बात की अंजलि कि हम केवल इन महापुरुषों को याद न करें बल्कि उनके विचारों को अपने व्यवहारों में भी उतारें। सत्य हमारे शब्दों में हो, ईमानदारी हमारे कर्मों में हो, सेवा हमारे व्यवहार में हो और देश हित हमारी सोच में हो। गांधी जी का सत्य और शास्त्री जी का संकल्प, यही बने हमारे जीवन का मजबूत आधार। तो श्रोताओं, श्रद्धा और सम्मान के साथ हम उन्हें याद करें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए समझे कि सच्ची देश सेवा आखिर होती क्या है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ साथी विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी को लेकर, वो बातें आपको जरूर

सुनवाई होगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हां श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vangthara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक महान पुरुष की प्रेम गाथा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खावानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। बागर रेडियो एवं बागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है कठोर आलोचना का सामना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का शीर्षक है कठोर आलोचना का सामना कैसे करें। साथियों, कहानी शुरू होती है इस तरह से कि शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाला लड़का बचपन से ही अलग सोच रखता था। जहाँ उसके हम उम्र बच्चे खेल कूद में समय बिताते, वहीं करण किताबों, सवालों और सपनों में खोया रहता था। वह अक्सर छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी कुछ अलग कर सकता हूँ। लेकिन अलग होना आसान नहीं होता श्रोताओं, अलग होने की कीमत चुकानी पड़ती है और उस कीमत का नाम होता है आलोचना। साथियों, करण जब स्कूल में था तब उसने एक बार विज्ञान प्रदर्शनी के लिए नया प्रयोग तैयार किया। वह प्रयोग किताबों में लिखे उत्तरों से अलग था। शिक्षक ने प्रयोग देखा, भुएं चढ़ाई और सबके सामने कह दिया, ये बहुत बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। साथियों, पूरी कक्षा हंस पड़ी। करण का चेहरा लाल हो गया, आंखें झुक गई और दिल में पहली बार ये टिस उठी, कठोर आलोचना की टिस। उस दिन वो घर आया, प्रयोग के सारे कागज फाड़ दिए और सोचने लगा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। श्रोताओं, समय बीतता गया, करण बड़ा हुआ, लेकिन आलोचना उसका पीछा करती रही। जब उसने कॉलेज में कला के साथ विज्ञान को जोड़कर पढ़ने की इच्छा जताई तो लोगों ने कहा, करियर बर्बाद कर रहा है। जब उसने नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का सोचा, रिश्तेदार बोले, आजकल के बच्चे जिम्मेदार नहीं होते। हर बार शब्द बदलते पर भाव वही रहता, नकारना, कमतर आंकना और तोड़ना। साथियों, करण के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक आवाज कहती, सब गलत कह रहे हैं, और दूसरी आवाज फुसफुसाती, कहीं वे सही तो नहीं है। श्रोताओं, एक दिन करण ने अपना लिखा हुआ लेख एक प्रतिष्ठित पत्रिका में भेजा। कई हफ्तों बाद जवाब आया, लेखन में परिपक्वता की कमी है, विषय पर पकड़ कमजोर है। श्रोताओं, बस ये पंक्तियां करण को अंदर तक तोड़ गईं। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसे लगा जैसे हर आलोचना उसके आत्मविश्वास पर हथौड़े की तरह पड़ रही हो। वह सोचने लगा, क्या आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ न करना। अगले दिन वो यूं ही पार्क में टहल रहा था। श्रोताओं, वही एक बुजुर्ग व्यक्ति बेंच पर बैठे किताबें पढ़ रहे थे। करण अनजाने में उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो मुस्कुराए और पूछा, बेटा परेशान लग रहे हो। करण न चाहते हुए भी बोल पड़ा। उसने सारी बातें कह दी, अपनी कोशिशें, असफलता और लोगों की कठोर आलोचनाएं। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा क्या तुमने कभी मूर्तिकार को पत्थर तराशते हुए देखा है। करण ने सिर हिलाया, पत्थर पर सबसे पहले क्या पड़ता है, हथौड़ा और छेनी, करण बोला। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, वही हथौड़ा और छेनी जो पत्थर को चोट पहुंचाते हैं, उसी से सुंदर मूर्ति निकलती है। सवाल ये नहीं कि चोट लगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम पत्थर हो या मूर्ति बनना चाहते हो। उस दिन पहली बार करण ने आलोचना को नजरिए से देखा। श्रोता, उसे समझ आया, हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती, हर नकारात्मक शब्द सच्चाई नहीं होते और हर राय को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। उसने खुद से पूछा, क्या यह आलोचना मुझे बेहतर बना सकती है। अगर जवाब हाँ होता तो वो सीख लेता, अगर जवाब नहीं होता तो वह उसे छोड़ देता। साथियों, करण ने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार वो आलोचना से डर नहीं रहा था। जब कोई कहता है कमजोर है, वो पूछता, कहाँ सुधार हो सकता है। जब कोई हंसता, वह सोचता, हंसी मेरी दिशा तय करेगी। धीरे धीरे दोस्तों, उसने ये सीख लिया कि आलोचना को अपनी पहचान नहीं, अपना औजार बनाना है। कुछ महीनों बाद उसी पत्रिका ने लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की। करण के मन में डर था, पुरानी अस्वीकृति का डर, लेकिन इस बार उसने डर से नहीं, साहस निर्णय से लिया। उसने लेख भेजा, परिणाम आया। साथियों, करण का लेख चयनित हुआ। वो जीत नहीं थी, लेकिन ये साबित करने के लिए काफी था। दोस्तों, आलोचना अंत नहीं होती, कभी कभी शुरुआत भी होती है। और आज करण सफल है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो संतुलित है। वो जानता है कि प्रशंसा से बहकना नहीं है, आलोचना से टूटना नहीं है और अपने मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं करने। जब कोई कठोर आलोचना करता है, वो मुस्कुराकर सोचता है, ये शब्द मेरी राह नहीं रोक सकते अगर मैं उन्हें रास्ता न बनने दूं। ये कहानी हमें संदेश देती है दोस्तों कि कठोर आलोचना जीवन का हिस्सा है। वो हमें गिराने भी आ सकती है और उठाने भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे कैसे लेते हैं। आलोचना को सुनिए, लेकिन खुद को मत खोइए। सीख लीजिए, लेकिन आत्मसम्मान मत छोड़िए। और याद रखिए साथियों, जो लोग आगे बढ़ते हैं वही सबसे ज्यादा आलोचना झेलते हैं। कठोर आलोचना से बचने का तरीका ये नहीं है कि सपने छोड़ दिए जाएं, बल्कि ये है श्रोताओं कि इतने मजबूत बन जाएं कि आलोचना हमें तरास सके, तोड़ न सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी आलोचना को लेकर।
आज मैंने आपको सुना है कि कठोर आलोचना का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से इस कहानी के माध्यम से करण ने आलोचना को सहा और अपने जीवन को सवार दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, वो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी, कहानी का शीर्षक था कठोर आलोचना का सामना कैसे करें। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है साथियों कि आलोचना जीवन का वो आईना है जिसमें हम अपनी वास्तविक छवि देख सकते हैं। यदि हम देखने का साहस रखें, अक्सर जब कोई हमारी आलोचना करता है श्रोताओं, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे आत्मसम्मान पर चोट की गई हो। शब्द तीर की तरह चुभते हैं और मन तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन यहीं से आलोचना की सबसे बड़ी शिक्षा शुरू होती है। श्रोताओं, आलोचना हमें सबसे पहले धैर्य सिखाती है। हर व्यक्ति तुरंत प्रशंसा सुनना चाहता है, पर आलोचना सुनने के लिए संयम चाहिए होता है। जब हम बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए शांत मन से आलोचना को सुनते हैं, तब हम खुद को भावनाओं के बहाव से ऊपर उठाते हैं और यही धैर्य हमें परिपक्व बनाता है। आलोचना की दूसरी शिक्षा है श्रोताओं, आत्ममंथन। हर आलोचना सही नहीं होती, लेकिन हर आलोचना बेकार भी नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम आलोचना को दो हिस्सों में बांटें, एक जो हमें सुधार की दिशा दिखाए, दूसरी जो केवल नकारात्मकता से भरी हो। जो उपयोगी हो उसे अपनाए, जो बेकार हो उसे छोड़ दे। यही विवेक श्रोताओं आलोचना को बोझ नहीं साधन बनाता है। इसलिए आलोचना हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब तक तारीफ करते हैं तो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझने लगता है, लेकिन आलोचना याद दिलाती है श्रोताओं कि सीखने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। जो व्यक्ति आलोचना से भागता है वह वहीं रुक जाता है, और जो उसे स्वीकार करता है वह आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए आलोचना की एक बहुत बड़ी शिक्षा ये भी है कि दुनिया को खुश करना असंभव है। हर कदम पर कोई न कोई असंतुष्ट मिलेगा श्रोताओं। यदि हम हर किसी की राय को अपने निर्णयों की कसौटी बना लें, तो हमारा जीवन दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाएगा। आलोचना हमें सिखाती है श्रोताओं कि अपनी पहचान और अपने लक्ष्य हमें खुद तय करने होंगे। जब हम बार बार आलोचना का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य से नहीं दिखते हैं, तो हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति विकसित होती है, और ये शक्ति हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है, जैसे कि करण को रखा। आलोचना की शिक्षा यह भी है श्रोताओं कि विकास हमेशा असहज होता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी का दबाव सहना पड़ता है, वैसे ही व्यक्ति को बेहतर बनने से पहले आलोचना का सामना करना पड़ता है। जो दबाव से टूट जाता है वो आगे बढ़ नहीं पाता, और जो दबाव सह लेता है वही ऊंचाई छूता है। तो श्रोताओं, आलोचना हमारी पहचान नहीं होती। लोग हमारे एक काम, एक विचार या एक प्रयास की आलोचना करते हैं, पूरे व्यक्तित्व की नहीं। जब हम इस अंतर को समझ ले श्रोताओं, तब आलोचना हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। इसलिए श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि आलोचना से डरना नहीं है, आलोचना में डूबना नहीं है, बल्कि आलोचना से सीखकर आगे बढ़ते रहना है। और जो आलोचना को गुरु बना लेता है, वह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर लेता है, जैसे कि करण ने की। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और इससे हमें जो शिक्षा मिली वो भी मैंने आपको बताई। अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहेंगे, ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वांगथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मारू नाम गिल्ली है, ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहा भी खबड़ाऊंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाई बहनों, आ लक्षण आपने ने आपने में देखाए तो आपने ने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में ते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
3: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीन आते नाम हिरते आवे, कागज केने कने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थी जाए।
2: तो हमरो बोलो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है। पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथ मिलने जावू है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती, जई वरे अधिकार हमरा अपना भी, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, मेहनत की मिट्टी में जब उम्मीद का बीज बोया जाता है तभी सफलता की फसल तैयार होती है। जी हाँ, किसान केवल फसल नहीं उगाता, वह आने वाले कल की उम्मीद उगाता है। मौसम चाहे जैसा भी हो, किसान का हौसला खेत की तरह हमेशा हरा रहे। मिट्टी से जुड़ी मेहनत कभी छोटी नहीं होती, यही मेहनत समाज का पेट भरती।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉकर रेडियो 90.8 FM पर। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान को लेकर अपने नियत समय पर एक नई शख्सियत के साथ में। जी हाँ श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम बात करने वाले हैं हमारे गांव की, हमारी मिट्टी की और उन लोगों की जिनकी मेहनत से हमारे घरों तक अन्न पहुंचता है। आज के हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक किसान जो खेती को केवल रोजगार नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन मानते हैं। खेत में बीज डालने से लेकर फसल को तैयार करने तक किसान कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन हर मौसम में उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से खेती में कौन सी ऐसी चुनौती है जिसे दूर करने के लिए उन्होंने किसानों के लिए कुछ सोचा है, और वो जो तरीका किसानों को बताने वाले हैं वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान के जीवन परिचय को। सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: सर आपका बहुत बहुत

0: स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं। तो जैसा कि सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं बुंदेलखंड के जिला ललितपुर का रहने वाला हूँ। जो पहले झांसी जिला था, अब ललितपुर है, और गांव का रहने वाला हूँ। ग्राम भैलोनी लोध है, पोस्ट भी वही है, और खेती मेरा पेशा है। और मेरा जन्म 1947 का है, नवंबर का। और मेरी शिक्षा 11th पास मैंने 1966 में की है। मध्य प्रदेश टीकोण हमारे बॉर्डर पर लगा हुआ है। हमारा जिला ललितपुर मध्य प्रदेश से ऐसे कवाड़ जैसे श्रीलंका चारों ओर समुद्र से घिरी है।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप आपके जीवन परिचय के बारे में हमें बता रहे हैं, तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी का बचपन बहुत अभाव में रहता है, किसी का बचपन बहुत अच्छे से गुजरता है, तो आपका बचपन कैसा रहा?
1: मेरा बचपन तो ठीक रहा। मैं जमींदार परिवार से हूं, चार भाई हैं हमारे, पिताजी चार भाई थे। और लेकिन उस वक्त शिक्षा का ज्यादा वो नहीं था, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कॉलेज में गया लेकिन आगे नहीं पढ़ सका 11th के बाद। और शिक्षा हमारी BSc पार्ट 1 हम पूरा नहीं किया 11th के बाद। कोई कॉलेज वगैरह हमारे इधर नहीं थे, इसलिए मध्य प्रदेश में जाना पड़ा।
0: बिल्कुल।
1: और बचपन हमारा ठीक से। फिर इसके बाद जब पढ़ना छोड़ा तो हमें 61 में, जब महानगर झांसी में ट्रैक्टर के डीलर नहीं थे, उस जमाने में मैंने 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर लेके खेती शुरू की और एक अच्छे किसानों में से था।
0: बिल्कुल।
1: 1987 में ये वक्त आया तो हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, चार भाई अलग अलग हुए, तो बिजली एक मोटर हमारे हिस्से की थी वो बस्ट हुई, जली नहीं बल्कि। तो फिर हमने ये नेचर गिफ्ट है कि जो हमें एक इनोवेशन का आइडिया दिया, जिसका मुझे पेटेंट भी प्राप्त हुआ, और वो एक आविष्कार यूपी नहीं, इंडिया नहीं, एशिया नहीं, संपूर्ण विश्व में अनोखा माना जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप विश्व में कभी सबसे पहले हमने चलाया, और बिना डीजल बिना बिजली के पानी लिफ्ट करके लिफ्ट कैनाल भी सबसे पहले चलाई, इसका रिकॉर्ड है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आपकी 11th के बाद पढ़ाई छूट गई थी, तो फिर आपके जीवन में आपने क्या किया, किस तरीके से आप इस मुकाम तक पहुँचे?
1: खेती करते करते ये तो जैसे नेचर कवि को कविता लिखने का विचार देता है, इनोवेटर को इन्वेंशन का विचार देता है। तो हमारे गांव के पास से नदी बहती है, उसमें से पानी कलकल कर हुआ बहता है, तो उसमें ये आइडिया है, एक खिड़की पत्तों की बना के हम बचपन में खेलते थे, उसी को हमने लकड़ी का एक वाटर व्हील बनाया। उससे हमने फिर चल के दो पंप एंटी क्लॉकवाइज चलाए, साइंटिस्टों का तांता लगा, वहाँ से केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल जो ICR का इंस्टीट्यूट है आए, फिर IIT दिल्ली के भी स्टूडेंट प्रोफेसर कैंप लगा के रहे, उसको टेस्ट किया गया और वो चीज आज आगे गई।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको नेचर से कहीं सारी चीजें अपने आप से करने का मौका मिला, और कहीं अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर उस चीज को देखने भी आए हैं, तो यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने जीवन में बदलाव कैसे लाया। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिला था, तो इस सपोर्ट को न मिलने के बावजूद भी आपने इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया और इस मुकाम तक पहुंचे?
1: हम पहले से संपन्न परिवार से व्यक्ति थे, तो जैसे नशे में एक जुनून होता है वो है, तो हम अपने बल पे कर उसको किए। हमारा भाई तो गाड़ियां मेंटेन कार के ललितपुर में शहर में रहते, लेकिन हमने ऐसा कुछ ना करके अपनी सारी संपत्ति अपना जीवन इसमें झोंका।
0: बिल्कुल। तो सर आप और क्या क्या करते हैं अपने?
1: हम कुछ नहीं करते खेती के लिए, हम इसी इनोवेशन में लगे थे, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम 80 साल के हो चुके, अब हमारा अंत है।
0: बिल्कुल।
1: और ये टेक्नोलॉजी आप सबको किसी को भी देने को कि भाई करो इसको जनहित में जो कर सकते हैं। हमको अमेरिका ने 91 में फेलोशिप दी, और वो कहते हैं इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक। थॉमस अल्वा एडिसन तो चले गए, बिजली का बल्ब बना गए, लेकिन आज उसका लाभ सारे लोग ले रहे हैं। तो ऐसे ही है कि वो सपोर्ट इतनी देते हैं कि हम आप तक आ जाएं, हमारी बात आप सरकार शासन तक पहुंचा दें। तो इस हिसाब से उन्होंने हमें इतना ही फेलोशिप दिया 91 में। उसमें भी हमें करना पड़ा दूसरों की तरह, भेदभाव अपने देश में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ये है कि वो कल्याणकारी है, तो हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका लोग हमने बनाया है, आप उसका लाभ दूसरों को दिला सकते हो तो दिलाएं।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप सर बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपने बलबूते पर ही इन सारी चीजों को किया है, तो आप आपके जीवन में क्या करना चाहते थे, आपके सपने क्या थे?
1: यही था कि हमारे यहाँ डीजल इंजन चार चार पाँच पाँच लगा के लोग बूस्टर पंप कहते जैसे, और चार चार लीटर प्रति घंटे का डीजल खर्च करके सिंचाई करते, उसमें किसान को लॉस होता था। अब सरकार का तो मकसद है डीजल बचाओ, बिजली बचाओ, और डीजल के आयात के ऊपर होने वाली विदेशी मुद्रा भी बचाओ और प्रदूषण बचाओ, तो ये तो इसमें सारी बचत का मामला है। तो हमने इसको एक अपना काम मान लिया, धर्म बना लिया कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जन कल्याणकारी काम है, तो जितना जो सपोर्ट जिसका मिला वो किया। लेकिन हम तो बिना डीजल बिजली के जो जमीन बंजर जमीन थी, बकरियां चरती थी, अनकल्टीवेटेड बैरन लैंड, उसमें हरियाली की सैकड़ों हेक्टेयर में।
0: बिल्कुल। तो सर ऐसी कौन सी चीज है खेती से जुड़ी जो आप हर किसान भाई तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: अभी तो हमारा ये कि भाई उनके सिंचाई साधन, जो आदमी जहाँ डीजल फूंक रहा है या बिजली है, बिजली की वजह से मैंने आपके इसी बांसवाड़ा में देखा कि कई लिफ्ट कैनालें बनी हैं, लेकिन पता लगा कि वो एक सीजन ही चल सकी, आगे वो बंद हैं, या तो ट्रांसफार्मर जल गया, बिल जमा नहीं हुआ, एक समस्या है। लेकिन हमारा ये है कि किसान को सिंचाई की सुविधा मिले, तो वो भी बिना डीजल बिजली से अच्छा क्या, तो हम एक आदमी एक ही काम कर सकता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें हमारी खेती को ऐसा बनाना है जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी खेती के कार्य अच्छे से हो सके।
1: डीजल माने सिंचाई सुविधा ही किसान को चाहिए, मुख्य चीज ये है।
0: बिल्कुल।
1: सिंचाई नहीं है तो खेती कैसे होगी? तो उसके लिए ही हमने प्रयास किया कि लोगों को सिंचाई जितनी हम जुटा सके, शासन तो जुटाता भी है, नहरें चलती हैं, कई जगह ये है कि नहर नीचे है, खेत ऊपर है, तो भी उसको डीजल इंजन लगाना पड़ते, हमने यहाँ देखा है नहरों पे।
0: बिल्कुल।
1: तो उससे मुक्ति दिलाना हमारा मुख्य लक्ष्य रहा।
0: बिल्कुल। तो सर आपने वागड़ क्षेत्र में कौन कौन सी खेती से जुड़ी चीजें देखी है जो आप यहाँ की विशेष है और आगे कई लोगों को उसके बारे में बताना चाहेंगे?
1: यही कहते हैं कि रबी फसल में लोग जो जहाँ डीजल इंजन लगाना पड़ते तो वो ना लगाना पड़े, जहाँ नदी नाले बह रहे हैं और सिंचाई का साधन नहीं है, तो इस तकनीकी से हमारे जो आविष्कार हमारा मंगल टर्बाइन, उसके द्वारा लोग पानी पहुँचा सकते हैं अपने खेतों में। अब उसमें खुद किसान अकेला नहीं कर सकता, वो कम्युनिटी बेनिफिट कुछ सैकड़ों हेक्टेयर सीखता, तो सरकार को इसमें मदद करना चाहिए उनकी।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर आप बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं, तो अब मैं आपकी जिंदगी का कुछ ऐसा पड़ाव जहाँ पर आप हताश हुए हो, निराश हुए हो, और उस स्थिति से आपने अपने आप को संभाला और आगे बढ़े।
1: जी, वो एक कहानी अलग बनती है। मेरा पॉलिटिकल भी क्षेत्र रहा पहले, 74 में अमेरिका में डबल अपने जिले में लड़ा दोनों कांग्रेस। इसके बाद हमारा ये जीवन मुड़ गया, क्योंकि हम भ्रष्टाचार विरोधी नंबर वन है, वो लंबी बात बन जाएगी।
0: बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप आपके जीवन परिचय से हमें रूबरू करा रहे हैं, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे समाज में बदलाव आए और समाज जो है वो अपनी अच्छी राह पर पहुंचे?
1: समाज को यही कि भाई खेती जहाँ जो कर रहे हैं लोग, परंपरागत खेती को भी अपनाते रहें, नई तकनीकी को भी अपनाते रहें। आपकी संस्था भी है बागधारा, जो भी वो किसानों के लिए करे उनका सहयोग लेकर इसका लाभ उठाए।
0: बिल्कुल सर। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में किसान मेहमान से हमारी बातचीत हुई और हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि खेती सिर्फ खेत में काम करने का नाम नहीं है, इसके पीछे अनुभव, मेहनत, धैर्य, प्रकृति की समझ और लगातार सीखने की भावना जुड़ी हुई है। जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से किसानों को सिंचाई की सुविधा ढंग से मिलना जरूरी है, और अगर वो सिंचाई उन्हें ढंग से नहीं मिल पाती है तो किस तरीके से उन्हें नुकसान हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत जो है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, जिस हाथ में मिट्टी लगती है वही हाथ हमारे जीवन में अन्न और खुशहाली लाता है। इसी सकारात्मक सोच और किसान के सम्मान के साथ अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और यदि जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जरे ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला निष्पुत है। वन अधिकार सिर्फ कानून थी ना जंगल थकी जरूर बोली में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा करे है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बुन आप कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का
2: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी

हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, गांधी जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़ी शक्ति या बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा विचार, एक दृढ़ संकल्प और अहिंसा का रास्ता भी समाज में बड़े परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है।

0: साथियों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन को लेकर अपने नियत समय पर राष्ट्रपिता प्रकरण के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है कि यूं तो असहयोग आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व ही स्वयं गांधी जी ने संभाला था और इसे स्थगित करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने माथे पर ली थी।
1: बिल्कुल,
0: देश के एक कोने चोरी चोरा में हुई हिंसा का दायित्व स्वयं पर लेकर उन्होंने उपवास किए थे। आंदोलन स्थगित करने से देश में असंतोष की जो लहर उठी थी, कशिश, उसका लाभ लेकर अंग्रेज सरकार ने गांधी जी की धर पकड़ की और उन्हें 6 वर्ष की जेल सजा सुना दी थी। उन्हें आंदोलन से अलग करने की अथवा उनकी लोकप्रियता में वर्षों के वियोग से कमी लाने की अंग्रेजों की उमंग इससे कामना नहीं हो पाई।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी को अपनी जेल में मरने देने जितने नैतिक हिम्मत अंग्रेज सरकार में नहीं थे। अतः अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद उन्हें अधिक समय जेल में न रख कर छोड़ दिया गया था। जेल से छूटने पर कांग्रेस में मतभेद और देश में सांप्रदायिक दंगों का वातावरण था।
1: बिल्कुल,
0: छूट कर जाने के अल्पकाल में ही सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का अनशन करके और उसके बाद परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच समझौता करवा कर गांधी जी केवल कांग्रेस को ही नहीं वरन पूरे देश को सही रास्ते पर लाए थे। जब जब भी आंदोलन में ज्वार आता अथवा जब जब भी नया आंदोलन छेड़ने की बारी आती, तब तक कांग्रेस को गांधी जी की याद आती। बल्कि आंदोलन के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करे और पूरे देश को अपने साथ रख कर चले, ऐसे बुजुर्ग कांग्रेस के पास गांधी जी ही थे। बड़े आंदोलनों के बीच वाइकोम, बोरसद, बारडोली जैसे स्थानों पर भी पूरा देश जिसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा, ऐसे सत्याग्रह चलते रहे। यज्ञ की अग्नि कभी शांत नहीं हुई और गांधी जी ने जरा फूंक मारी कि आग की लपेटे आकाश में छूने लगती।
1: बिल्कुल अंजलि जी, श्रद्धा साथियों, 1930 का युवा कांग्रेसियों का उत्साह तो ऐसा था कि गांधी जी को अपने गिरफ्त में ले लें। सुभाष बाबू जैसे उत्साही नेताओं ने तो अंजलि जी, जब कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा, तब एक वैकल्पिक समांतर सरकार ही गठित की जानी चाहिए ऐसा संशोधन रखा था। कांग्रेस को भरोसा था कि देश की नब्ज तो गांधी जी ही परखते हैं, अतः सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित हुआ और अध्यक्ष जवाहरलाल जी ने गांधी जी से उसका नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। साथियों, गांधी इरविन मंत्रणा के समय कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी दिल्ली में ही बैठती। गांधी जी आधी रात को आकर भी कार्यकारिणी के समक्ष उन दिनों की चर्चा का विवरण प्रस्तुत करते। गांधी जी जिन निर्णयों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उस बारे में कार्यकारिणी भी मतभेद पे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे मुख्य नेताओं के तो अलग अलग मुद्दों को लेकर गांधी जी के साथ मतभेद थे। दोनों को गांधी जी की होशियारी के प्रति विश्वास था। दोनों को इस बात का भी बराबर एहसास था कि देश की नब्ज जिसे गांधी जी पहचान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पहचान सका।
0: बिल्कुल,
1: दोनों में गांधी जी द्वारा जो समाधान तय किया जाए उसके प्रति पूर्ण वफादारी और सच्चाई के साथ क्रियान्वित करने की सामर्थ्य भी थी।
0: बिल्कुल कशिश, गोलमेज सम्मेलन के समय वैसे तो सीधे युद्ध लड़ने नहीं जाना था। कूटनीतिक विचार विमर्श में गांधी जी से बड़े चढ़े लोग भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस को यह भान था कि गोलमेज सम्मेलन भी आखिर तो युद्ध के अध बीच ही हो रहा था। युद्ध के समय नेतृत्व कर सके ऐसी आवाज एक ही व्यक्ति की थी और वो थे गांधी जी।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातों को जान रहे हैं अंजलि जी, ये बातें आगे भी हमारी ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी यहाँ मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि हम कार्यक्रम में सबके गांधी राष्ट्रपिता प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, और जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि युद्ध के समय नेतृत्व कर सके ऐसी आवाज एक ही व्यक्ति की थी। उस समय अंग्रेजों के सामने एक ही स्वर प्रस्तुत होना चाहिए था, भिन्न भिन्न स्वर नहीं। यह एक स्वर तो गांधी जी का ही हो सकता है, ऐसा कांग्रेस का विश्वास था। अतः जब शाशा के निमंत्रण और पसंदगी से वर्षा ऋतु में उग जाने वाली घास की तरह कई कई दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से सम्मेलन भरा हुआ था, तब देश के सबसे बड़े दल का वहां एकमात्र एक ही प्रतिनिधित्व उपस्थित था। कूटनीति के तमाम चालों के बीच भी अन्य प्रतिनिधियों और कांग्रेस सरकार की दृष्टि से भी इस खेल के खास मोर्चे पर खड़े गांधी जी की ओर टिकी थी। तमाम विरोधी भी इसी का विरोध करने में मानो बहुत रुचि ले रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: विशेष कारण यह है कि सब जानते थे कि आखिर तो इसी की आवाज राष्ट्र की आवाज है। वह विचार विमर्श असफल रहा। इंग्लैंड में गांधी जी ने वहां बिताए 3 माह का उपयोग गोलमेज सम्मेलन और उसकी उप समितियों में जितना किया, इससे भी अधिक इंग्लैंड की प्रजा के विविध वर्गों से मिलने में उनका दिल जीतने में किया था। 16 वर्ष बाद इंग्लैंड की पार्लियामेंट के पास ऐसा निर्णय करने के पीछे एक बड़ा तत्व गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी ने इंग्लैंड की जनता का दिल जीतने का जो काम किया था वह था।
1: बिल्कुल अंजलि जी। श्रोता साथियों, गांधी जी भारत आए, उनके ही शब्दों में कहें तो खाली हाथ पर मेले हाथ नहीं। फिर 2 वर्ष तक चलने वाला लंबा आंदोलन बाह्य दृष्टि से वैसे तो असफल ही गिना जाने जैसा था। इस आंदोलन ने इस देश में एक अमर राष्ट्र भावना भर दी थी, और राष्ट्र जानता था कि यह भावना जगाने के पीछे सबसे बड़ा प्रेरक तत्व गांधी ही था। यह तत्व ऐसा था जो दुर्बल को भी खड़ा करके त्याग बलिदान के लिए तैयार कर दे। यह तत्व ऐसा भी था साथियों, जो राष्ट्र को अपनी छोटी छोटी गलतियों और पापों के प्रति सजग कर सके, राष्ट्र की अंतरात्मा का विवेक जगा सके। इस अवधि के दौरान गांधी जी के एक उपवास ने देश में अस्पृश्यता को अप्रतिष्ठित कर दिया अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: दूसरे उपवास ने सत्याग्रहियों को अंत आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि करने की प्रेरणा दी। दोस्तों, इस काल के दौरान गांधी जी की यात्रा ने संपूर्ण देश में फिर से चेतना का संचार कर दिया। फिर एक निराशा का काल आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के मिशन की सर्वांगीण निष्फलता के बाद क्रिप्स के आने से पहले ब्रिटिश प्रचार माध्यमों ने ऐसा वातावरण खड़ा किया था मानो वह स्वराज देने के लिए ही आ रहे हो। क्रिप्स गलत तारीख का चेक देकर गया। उसके बाद देश में पुनः निराशा घर कर गई। घर आंगन में बजने वाले महायुद्ध के नगाड़ों ने इसमें निराशा की बाढ़ ला दी। भारत छोड़ो की गांधी जी की एक ही ललकार से यह निराशा कहीं अदृश्य सी हो गई अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: फिर वापस निराशा आई। गांधी जी के आगा खान महल के 21 दिनों के उपवास में इस निराशा के संबंध में स्वयं कुछ न कर सकने को लेकर लाचारी हेतु चित्कार था।
0: बिल्कुल कशिश, शिमला कॉन्फ्रेंस के समय गांधी जी सदस्य के रूप में उपस्थित नहीं थे। उनकी सलाह को सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पर सरकार और मुस्लिम लीग भी उतना ही महत्व देती थी।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार हर समय राष्ट्र की आवाज बनकर उसे ज्वार में बदल देने की भूमिका गांधी जी निभाते थे। अतः उन्हें राष्ट्र ने राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। बीच में थोड़े समय 1-2 राजनेताओं ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने के खिलाफ शोर मचाया था। आजकल कई संतानों को स्वयं की अमुक व्यक्ति के पुत्र के रूप में पहचान कराना पसंद नहीं आता। ऐसा ही वह बचकाना प्रयास था। यह भी ध्यान देने जैसा है कि यह आवाज उनकी तरफ से आई थी जिन्हें इस देश के संविधान तथा इसकी समन्वित संस्कृति के प्रति शिकायत है। जिन्हें आज भारत जिस रूप में है उस रूप में राष्ट्र मानने में भी बुरा लगता हो, उन्हें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने में भी बुरा लगता हो तो यह नितांत स्वाभाविक है। बल्कि उनकी समग्र विचारधारा के प्रति यही सुसंगत है कि यही कहना समीचीन होगा कि इस राष्ट्र को मात्र एक धर्म के नागरिकों तक ही जो सीमित करते हैं, वे यदि ऐसा कहना चाहते हो कि गांधी जी ऐसे संकुचित राष्ट्र के राष्ट्रपिता नहीं थे, तो उनकी बात में बेशक तथ्य है और ऐसा जरूर मानना पड़ेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने ढेर सारी बातें श्रोता साथियों से की राष्ट्रपिता प्रकरण को लेकर, अगले रविवार को हमारे श्रोता साथियों से हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रकरण के साथ में। हम जानेंगे गांधी एक कुशल व्यूह रचनाकार के बारे में। लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: मारू नाम गिल्ली है ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घनी रोई रही थी तो मुँ हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है तो मुँ दूड़ी ने बा कने गई ने कीधू कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नू दूधस पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ाऊंगा तो इन्हें दस्त तो लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नू दूधस पीवू है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
5: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बहनों आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपने ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
7: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
6: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
8: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
7: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
6: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
7: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
6: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

स्वागत रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रही थी संविधान और चुनाव प्रणाली में, हमने जाना था विधान परिषद की सदस्यता और मताधिकार, किन किन भारतीयों को था मतदान का अधिकार। यही आज हम बात करते हैं राज्यों की परिषद संघ स्तर के बारे में।
1: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि, राज्यों की परिषद संघ स्तर को लेकर हम बात करें तो राज्यों की परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि चुनकर इस सदन के लिए भेजने की व्यवस्था की गई थी। भारत की सभी प्रांतीय परिषदों के लिए निर्धारित कुल 156 सदस्यों में से 150 का चुनाव प्रांतीय परिषद को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से करना था, जबकि 6 सदस्यों के चुनाव का विशेष अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रांतीय परिषद के 150 स्थानों में से 75 प्रतिनिधियों का चुनाव हिंदुओं और अन्य समुदाय को करना था। उन 50 प्रतिनिधियों का चुनाव मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को करना था। 4 प्रतिनिधि सिखों द्वारा चुने जाने थे।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि 6 स्थान महिलाओं और 6 स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। राज्यों की परिषद के प्रतिनिधि

0: समितियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होना था जागृति
1: जी हाँ।
0: लेकिन बेहद समिति जनसंख्या को ही मतदान का अधिकार दिया गया था। इन चुनावों में आयकर चुकाने वाले जमींदार भूस्वामी, आवासीय संपत्ति रखने वाले, साक्षर प्राथमिक मैट्रिक स्तर की शिक्षा हासिल कर चुके, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सेवारत, सेना में काम करने वाले व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे।
1: जी हाँ। इसी के साथ साथियों, इस परिषद के लिए भारतीय रियासतों के राज प्रमुख या शासक अपने प्रतिनिधि मनोनीत कर सकते थे। वहीं रियासतें संघ के राज्यों की परिषद के लिए अपने प्रतिनिधि भेज सकते थे। अंजलि, जिन्होंने भारतीय संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल होना स्वीकार कर लिया हो, बड़ी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साथियों, हैदराबाद को 5, मैसूर, कश्मीर, ग्वालियर, बड़ौदा को 3-3 स्थान मिले, लेकिन छोटी रियासतों को समूह बनाकर स्थान आवंटित किए गए थे।
0: जी।
1: मसलन जावरा और रतलाम को एक स्थान बड़वानी, अलीराजपुर और शाहपुरा को मिलाकर एक स्थान पोरबंदर और मोरवी को एक स्थान दिया गया था।
0: जी।
1: एक तरह से छोटी रियासतों को समूह में रख दिया गया था। इसके साथ ही ये व्यवस्था की गई थी कि उन्हें आपसी सहमति से राज्यों की परिषद के लिए सदस्य का चुनाव करना है। बड़ी रियासतें जिन्हें अकेले अपना सदस्य चुनना था, उनका कार्यकाल 9 वर्ष था, जबकि साझा सदस्य चुनने वाली रियासतों के समूह के सदस्यों का कार्यकाल 3-3 वर्ष तय किया गया था।
0: जी बिल्कुल।
1: इतना ही नहीं, समूह में मिलकर सदस्य चुनने वाली रियासतें बारी बारी से अपने सदस्य परिषद में भेज सकती थी। साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा चयनित सदस्य की नियुक्ति या किसी भी तरह के संदेह या विवाद की स्थिति में गवर्नर जनरल को नियम बनाने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें संघ परिषद की, तो श्रोता साथियों, संघ परिषद यानी फेडरल असेंबली के लिए कुल 375 स्थान निर्धारित किए गए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 250 सदस्य और भारतीय रियासतों को 125 सदस्य चुनने थे।
1: जी हाँ।
0: भारतीय रियासतों को अपने प्रतिनिधि वैसे ही चुनने थे जागृति जी, जैसे कि राज्यों की परिषद के लिए तय किया गया। कुछ रियासतों ने विधान परिषद की समान व्यवस्था स्थापित करनी शुरू कर दी थी, अतः वे भी चुनाव का तरीका अपना सकती थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को श्रोता साथियों, संघ परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करना था।
1: जी हाँ।
0: दूसरे अर्थों में प्रांतीय परिषद के सदस्य संघ परिषद के चुनाव में प्राथमिक मतदाता थे। संघ परिषद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई थी। कहना चाहेंगे जागृति जी कि ब्रिटिश भारत की प्रांतीय परिषदों को जिन 250 प्रतिनिधियों को चुनना था, उनमें से 105 स्थान सामान्य श्रेणी के थे।
1: जी हाँ।
0: उनमें 19 स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था के आधार पर सिखों के लिए 6, मुस्लिमों के लिए 82, एल्गो इंडियन के लिए 4, यूरोपियन समुदाय के लिए 8, वाणिज्य और औद्योगिक समूह के लिए 11, भूस्वामियों के लिए 7, मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 9 स्थान तय किए गए थे।
1: बिल्कुल अंजलि, प्रांतीय परिषदों में सिखों और मुसलमानों के चुनाव के लिए केवल सिख और मुस्लिम प्रतिनिधि ही मतदान कर सकते थे। संघ परिषद के लिए निर्धारित वाणिज्य और उद्योगों, भूस्वामियों, मजदूरों के प्रतिनिधियों का चयन इन्हीं वर्गों की सभाओं संगठनों को करना था। संघ परिषद के चुनाव के लिए प्रांतीय परिषद के सदस्यों प्रतिनिधियों को प्राथमिक मतदाता यानी कि प्राइमरी इलेक्टोरेट माना गया था। ये प्राथमिक मतदाता संघ परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए शक्ति संपन्न थे। साथियों, अगर प्रांतीय विधानसभा और विधान परिषद को लेकर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में भी 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी अंजलि, जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता था।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें सभी प्रांतों के विधानसभा के लिए कुल 1585 स्थान तय किए गए थे, जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव से भरा जाना था। यहाँ सामान्य स्थान सिखों, मुस्लिम समुदाय, भारतीय ईसाइयों, एल्गो इंडियन, यूरोपियन समुदाय, जमींदार, विश्वविद्यालय, उद्योग और वाणिज्य तथा महिलाओं के लिए स्थान निर्धारित थे। विधान परिषद में कुल 517 स्थान निर्धारित थे श्रोता साथियों, जिनमें सामान्य मुस्लिम, यूरोपीय, भारतीय ईसाई के लिए स्थान तय थे।
1: जी हाँ।
0: इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने के लिए मुस्लिम, यूरोपियन या भारतीय ईसाई मतदान नहीं कर सकते थे।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह मुस्लिम प्रतिनिधि स्थान के लिए यूरोपियन मतदान नहीं कर सकते थे, यानी सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव सामान्य वर्ग के मतदाता, मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम मतदाता, एल्गो इंडियन प्रतिनिधि का चुनाव एल्गो इंडियन मतदाता और भारतीय ईसाई का चुनाव भारतीय ईसाई ही कर सकता था।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, ये बातें हमारी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगरानी

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि हमारी बातें बहुत ही अच्छी चल रही थी, गीत से पहले हम जान पा रहे थे प्रांतीय विधान सभा और विधान परिषद के बारे में।
1: जी हाँ।
0: यही अगर प्रांतीय विधानसभा के चुनाव को लेकर हम बात करें अंजलि, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की मकसद से प्रांतीय परिषदों के चुनाव और गठन की व्यवस्था की गई थी।
1: जी बिल्कुल।
0: ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत, मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध, और 4 आयुक्त नियंत्रित क्षेत्र ब्रिटिश, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग थे। 11 प्रांतों की विधान परिषद के लिए कुल 1585 विधायी स्थान निर्धारित थे। इसी के साथ साथ प्रांतीय परिषद में प्रतिनिधित्व का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया था।
1: जी जी।
0: सामान्य स्थान पिछड़े क्षेत्र और पिछड़ी जनजातियाँ, सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय, यूरोपियन समुदाय, भारतीय ईसाई समुदाय, वाणिज्य, उद्योग, खनन और वाणिज्य, भूस्वामी, विश्वविद्यालय और मजदूर।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें मतदान के अधिकार की, तो श्रोता साथियों, प्रांतों के विधानसभा के लिए मतदाताओं की सूची कुछ पात्रता शर्तों के आधार पर बनाई गई थी।
0: जी हाँ।
1: अलग अलग प्रांतों में मतदाता होने के लिए अलग अलग पात्रताएं थी। यहीं बात करें सामान्य बुनियादी पात्रता की, तो श्रोता साथियों, मद्रास प्रांत में जो व्यक्ति विधान परिषद क्षेत्र में बीते वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिन निवासरत रहा हो, जबकि बम्बई प्रांत में व्यक्ति के निवास की अवधि 180 दिन, संयुक्त प्रांत और पंजाब में व्यक्ति का स्थानीय निवासी होना माना गया था।
0: बिल्कुल। यही अगर कर भुगतान के आधार पर पात्रता को लेकर हम बात करें, तो मद्रास प्रांत में जिस व्यक्ति ने मद्रास मोटर व्हीकल टैक्सेशन अधिनियम 1931 के तहत वर्ष भर का कर अदा किया हो, या मद्रास नगर पालिका अधिनियम 1919, मद्रास जिला परिषद अधिनियम 1920 या सैनिक छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत प्रांतीय व्यवसाय कर अदा किया हो या आय कर अदा किया हो, बम्बई संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत और बरार में भी आय कर भुगतान को पात्रता माना गया।
1: जी।
0: बंगाल प्रांत में भी बंगाल मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1932 के तहत कर देने वाला व्यक्ति पात्र माना गया। बिहार में जिस व्यक्ति ने कम से कम 1.5 रुपए का कर चुकाया हो, उसे मतदान का अधिकार दिया गया।
1: जी जी।
0: उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी आय कर नगर निकाय कर के आधार पर पात्रता तय की गई थी।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें संपत्ति के आधार पर पात्रता की, तो श्रोता साथियों, जो व्यक्ति मद्रास स्टैंड्स लैंड अधिनियम 1908 के अंतर्गत बीते फसली वर्ष के आखिरी दिन की पंजीकृत भूस्वामी, ईमानदार, रैयतवारी, पट्टेदार हो, या बीते फसली वर्ष में सरकार को भूमि किराए दी हो, या बीते फसली वर्ष में मालबार टेनेसी एक्ट में निश्चित अवधि के लिए कनामदार या कुछ ही कनामदार रहा हो, या संयुक्त भूधारिता होने पर जिसका वार्षिक किराया 1000 रुपए या अधिक रहा हो।
0: जी हाँ।
1: संयुक्त प्रांत और पंजाब में व्यक्ति के पास इतनी जमीन हो जिसका भू राजस्व सालाना कम से कम 5 रुपए चुकाया जाता हो। पंजाब में अगर किराए पर 6 एकड़ सिंचित या 12 एकड़ असिंचित जमीन ली हो, पंजाब प्रांत में ऐसी अचल संपत्ति का मालिक हो जिसकी कीमत 2000 रुपए से कम न हो।
0: जी हाँ।
1: उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 6 एकड़ सिंचित या 12 एकड़ असिंचित जमीन का स्वामी हो, या कम से कम 10 रुपए के भू स्वामी की श्रेणी में आता हो। सिंध प्रांत में व्यक्ति के पास कराची में अपना या किराए का घर हो, या किसी नगर में कोई घर हो।
0: जी हाँ। बिल्कुल अंजलि, अगर पात्र व्यक्ति नाबालिग हो, अगर इसको लेकर हम बात करें, तो अगर व्यक्ति किसी ऐसे नाबालिग का अभिभावक है जो यदि वयस्क होता, तो उसे मतदान का अधिकार होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: साक्षरता को लेकर हम बात करें, तो मद्रास में साक्षर व्यक्तियों को भी मतदान का पात्र माना गया है, लेकिन बम्बई, सिंध, बिहार और बंगाल में मैट्रिक उत्तीर्ण या इसके समकक्ष शिक्षा होनी जरूरी माना गया है।
1: जी बिल्कुल।
0: जबकि संयुक्त प्रांत में अपर प्राथमिक स्तर की शिक्षा को जरूरी माना गया है, पंजाब प्रांत में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा जरूरी मानी गई है।
1: जी जी।
0: यही अगर ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार में सेवारत को लेकर हम बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार से सेवानिवृत्त है, पेंशन पाता है, या ब्रिटिश सेना में किसी सैनिक की विधवा भी मतदान की पात्र मानी गई है।
1: जी बिल्कुल। जागृति जी, आपने सही कहा। यही बात करें संविधान सभा में मानवाधिकार पर चर्चा की, तो श्रोता साथियों, किसी भी देश में मतदान सत्ता में भागीदारी का पहला कदम है, क्योंकि सरकार जनता के मत से चुनी जाती है। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में भारत के संविधान की उद्देशिका को अंतिम रूप देने को लेकर बहस चल रही थी।
0: जी हाँ,
1: कहा जा रहा था कि भारत की राज्य व्यवस्था को कोई भी शक्ति और अधिकार जनता से ही मिलेंगे। भारत के लोग अपने मत के जरिए राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को उनकी नीतियों और विचारों के आधार पर चुनेंगे। जिन्हें ज्यादातर जनता मत देगी उन्हें कानून नीतियाँ और नियम बनाने शासन का अधिकार मिल जाएगा। उधर सरकार को व्यवस्था चलाने के लिए जनता वस्तुओं और सेवाओं का कर शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा।
0: जी हाँ बिल्कुल अंजलि, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया था, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए। बहस के दौरान ब्रजेश्वर प्रसाद ने उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों पर आपत्ति की।
1: जी बिल्कुल,
0: उनका तर्क था कि किसी विधि संबंधी विचारधारा का वास्तविक तथ्यों से कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो उस विचारधारा का कोई मूल्य नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: नेपाल सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और वह अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकती है। सोवियत रूस की सरकार को रूस के साम्यवादी पक्ष को खत्म करने की स्वतंत्रता है। इस तरह के कामों का परिणाम क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता युद्ध की ओर ले जाती है और वह साम्राज्यवाद का कारण बनती है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: साथियों संविधान सभा के कई सदस्यों खासकर रियासतों के प्रतिनिधियों को ये विचार स्वीकार नहीं था कि जनता ही राज्य को शक्ति प्रदान करेगी।
1: जी जी, इसी के साथ जागृति जी हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 जनवरी 1947 को लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पर चली बहस का जवाब देते हुए कहा था कि जनता के सर्व सत्ता संपन्न होने की कल्पना संविधान के लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव में की गई है।
0: जी हाँ,
1: वह कुछ नरेशों को पसंद नहीं है, यह आपत्ति आश्चर्यजनक है और मैं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मंत्री यदि सचमुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन पद्धति की तीव्र निंदा के लिए उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी व्यक्ति चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो यह कहना कि ईश्वर दत्त विशेषाधिकार से मैं मनुष्य पर शासन करने आया हूँ यह नितान जघन्य है।
0: जी हाँ,
1: बहस मुबा हिस्से के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने वयस्क मताधिकार के विषय पर स्वयं प्रस्ताव पेश किया कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तिथि पर ऐसी किसी समूचे विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिए नियत की गई हो 21 वर्ष की अवस्था से कम नहीं है तथा इस संविधान अथवा अनुचित विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास चित्त विकृति अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अयोग्य नहीं किया गया है ऐसे किसी निर्वाचन में मतदान के रूप में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा।
0: जी हाँ,
1: ब्रजेश्वर प्रसाद का कहना था कि वयस्क मताधिकार में यह पूर्व धारणा होती है कि निर्वाचक गण समझदार हैं। जहाँ निर्वाचक गण विवेकशील न हो वहाँ संसद मूलक लोकतंत्र नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: बहस से ये पता चलता है कि नागरिक के विवेकशील हुए बिना यह व्यवस्था जीवंत नहीं होगी।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, हमने जाना कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में प्रांतीय विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। अगले रविवार को हम फिर से रूबरू होंगे एक नई चर्चा के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: साथियों यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
4: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा
5: पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: આપણે ક્યારે વિચાર કર્યો હે કે જૈયા પેરની છાંમાં આપણે રહો યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હે જે હવામાં આપણે હાલ રહો એ ભી આપણા થકી કઈ આશ રાખે હે હવે અગર પેર ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલ્કિ આપણી જિમ્મેદારી હે એક પેર લગાડંગા પાણીને બચાવંગા ને આપણે ધરતીને જીવનદાન આલંગા
7: હવે પ્રકૃતિને બચાવો ભવિષ્યને હદારો હવે
6: આજ નાના કદમ હે એ આબાવાળા કાલ ને બદલાવ ની શરૂઆત હે
7: વાગડ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત।

0: પસંદ વાહિનીઓ મિશ્રણ કર્યું તો પછી બાપ દાદાની જમા હતી મારો અધિકાર કેમ નથી. સોરી જન્મથી કી સત્તા હૈ કાનૂને આ વાત માની હૈ કલ્પના પોતે એનો હક કોઈ લઈ શકે ના રિવાજ અને સચને બદલી શકે. બાપ દાદાની જમીન સોરીનો અધિકાર સોરીનો હક એની પહેચાન. વાગડ રેડિયો એવં વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત.
1: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई.
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल. आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में. जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हम जब भी हाजिर होते हैं तो हमारे आपसे नई नई व्यंजन विधियों को लेकर ढेर सारी बातें रहती हैं. तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी ही व्यंजन विधियों को लेकर हाजिर हुई हूँ. हमारी आपसे पहली व्यंजन विधि रहने वाली है मूंग दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी. जी हाँ श्रोता साथियों, जब मौसम में हल्की ठंडक शुरू हो जाए और सुबह सुबह ठंडी हवा चलने लगे तो घर में बने गर्मा गर्म खिचड़ी की याद आ ही जाती है. मूंग दाल की खिचड़ी हमारे घरों का ऐसा पारंपरिक भोजन है जिसे दादी नानी अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया करती थी. कम मसाले, साधारण सामग्री और बनाने में आसान होने के कारण ये भोजन आज भी घर घर में पसंद किया जाता है. तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और इसे बनाने के लिए हम कौन सी विधि अपना सकते हैं, तो कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी. लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत. आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में.

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले व्यंजन विधि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आज हमारी आपसे पहली व्यंजन विधि रहने वाली है मूंग की दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि जब मौसम में हल्की ठंडक शुरू हो जाए और सुबह सुबह ठंडी हवा चलने लगी तो घर में बनी गर्मा गर्म खिचड़ी की याद हमें आई जाती है। खिचड़ी को खास बनाने की बात यह है श्रोता साथियों कि इसमें दाल और अनाज दोनों का मेल होता है। इसे गरम गरम परोसा जाए और साथ में थोड़ा सा घी, दही, छाछ, पापड़ या अचार हो तो साधारण खिचड़ी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो श्रोता साथियों, जानते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो श्रोता साथियों, 1 कप हमें चावल चाहिए होगा, 1.5 कप हमें मूंग दाल चाहिए होगी, 1 से 2 चम्मच देसी घी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच 1 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है, 1 टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ डालना है, 1 मिर्च बारीक कटी हुई, 4 से 5 कप आप पानी डाल सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। चाहो तो श्रोता साथियों, थोड़ी सी कटी हुई गाजर या मटर या लौकी भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये तो साथियों हमने जाना कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। यही जानते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी है। सबसे पहले श्रोता साथियों, चावल और मूंग दाल को अलग अलग या एक साथ साफ करके अच्छी तरह से हमें धो लेना है। दादी नानी के समय अनाज को साफ करना और उसमें छोटे पत्थर या कंकड़ निकालना रसोई का जरूरी काम माना जाता था। धोने के बाद श्रोता साथियों, दाल और चावल को लगभग 15 से 20 मिनट हमें भिगो कर रखना है। इससे हम देखते हैं कि खिचड़ी हल्दी और अच्छी तरह से पकती है। अब एक मोटे तले की पतली या कुकर आप ले ले, इसमें घी डालकर हल्का सा गर्म कर ले। घी गर्म होने पर श्रोता साथियों, इसमें हमें थोड़ा सा जीरा डालना है। जीरा चटकने लगे तो 1 चुटकी हींग हमें डाल देनी है। इसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर हमें हल्का सा भून लेना है। अब इसमें श्रोता साथियों, हल्दी और घुली हुई मूंग दाल और चावल हमें डालने हैं। इन्हें मसालों के साथ 1 से 2 मिनट हल्के हाथ से हमें चलाते हुए भून लेना है। पुराने समय में दादी नानी खिचड़ी को इसी तरह से घी और थोड़ा भून कर बनाया करते थे। इससे श्रोता साथियों, हम देखते थे कि उसमें अच्छी खुशबू आती थी। अब इसमें श्रोता साथियों, स्वाद अनुसार आप नमक डाल लें और लगभग 4 से 5 कप पानी डाल लें। खिचड़ी को जितना नरम और पतला रखना हो आप उसी हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा पानी आप डाल सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो श्रोता साथियों, ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर लगभग 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर ले और कुकर का दबाव ही वो अपने आप ही कम होने दें। अगर पतली में बना रहे हैं तो इसे धीमी आंच पर पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें। दाल और चावल अच्छी तरह से गल जाए और दोनों आपस में मिल जाए और नरम हो जाए तो श्रोता साथियों, समझिए कि आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब खिचड़ी को एक कटोरी या थाली में हमें निकाल लेना है। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी हमें डाल देना है और थोड़ा सा धनिया हमें डाल देना है। यही अगर परोसने की बात करी तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि गर्मा गर्म मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ दही, छाछ, पापड़, अचार या घर की बनी चटनी परोसी जा सकती है। गाँव में कई जगह श्रोता साथियों, खिचड़ी में थोड़ा सा दही डालते हैं, अचार डालते हैं या दोनों को मिलाकर भी डाल के खाते हैं। अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो श्रोता साथियों, तो उस खिचड़ी में 1 चम्मच घी डालने पर हम देखते हैं कि स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाती हैं। ये तो श्रोता साथियों हमने बात की कि हमें इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और कौन सी विधि अपनाकर बहुत ही आसान तरीके से हम इस व्यंजन विधि को अपने घर में बना सकते हैं। और अब जानते हैं श्रोता साथियों कि इस मूंग की दाल की खिचड़ी से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि मूंग की दाल की खिचड़ी को हल्का और सरल भोजन माना जाता है। इसमें चावल से कार्बोहाइड्रेट और मूंग की दाल से प्रोटीन मिलता है। दोनों को साथ खाने से भोजन में अलग अलग पोषक तत्व हैं वो शामिल होते हैं। मूंग दाल आमतौर पर श्रोता साथियों आसानी से पचने वाली दालों में गिनी जाती है। इस कारण सादा मूंग दाल की खिचड़ी कई परिवारों में तब भी बनाई जाती है जब शरीर को हल्का भोजन देने की जरूरत महसूस हो। इसमें अगर गाजर, मटर, लौकी जैसे सब्जियां हम डाल ले तो खिचड़ी में सब्जियों का पोषक तत्व है वो भी बढ़ सकता है। खिचड़ी को श्रोता साथियों, अगर हम बहुत कम तेल या बहुत कम मसालों में बनाते हैं तो ये हमारे रोज के भोजन का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि श्रोता साथियों, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है।
इसलिए श्रोता साथियों, इसे किसी बीमारी की दवा का इलाज समझकर हमें नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथियों, आपको एक और खास बात कहना चाहूंगी कि दादी माँ की रसोई में खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं बनाया जाता है। इसमें स्वाद के साथ मौसम, घर के लोगों की जरूरत और उपलब्ध सामग्री का ध्यान भी रखा जाता है। मूंग की दाल की खिचड़ी एक अच्छा उदाहरण है। घर में उपलब्ध चावल, दाल, थोड़ा सा घी और साधारण मसालों से भी स्वादिष्ट भोजन हम बना सकते हैं। इसमें न बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और न ही साथियों इसमें बहुत ज्यादा सामग्री की हमें जरूरत होती है। आज के समय में हम देखते हैं कि जब लोग जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी पारंपरिक रेसिपी हमें याद दिलाती है कि स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए हमेशा बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। सही मात्रा में साधारण सामग्री और थोड़ा सा प्यार भी काफी होता है। तो इस बार श्रोता साथियों, जब सुबह सुबह हल्की ठंड महसूस हो और मन करे कुछ गर्मा गर्म सादा और घर जैसा खाने का, तो क्यों ना बनाई जाए दादी माँ के हाथों की याद दिलाने वाली मूंग की दाल की खिचड़ी। गर्मा गर्म खिचड़ी, ऊपर से थोड़ा सा घी, साथ में थोड़ा सा दही या अचार डालकर हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और कौन सी विधि अपनाकर हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं और इस व्यंजन विधि के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ढेर सारी बातों को जाना। तो कार्यक्रम के माध्यम से ये रेसिपी तो हमारी आपसे पूरी हुई। आगे भी मैं आपको एक और रेसिपी के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमने व्यंजन विधि के बारे में जाना था कि मूंग की दाल के गर्मा गर्म खिचड़ी को हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। अब यही जानते हैं कि हम घर पर मूंगफली और दही का घोटा कैसे बनाएं। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सबसे पहले साथियों, आपको मूंगफली कच्ची या भुनी हुई आप ले सकते हैं 1 कप। साथ ही आपको ताज़ा दही लेना है 2 कप। ठंडा पानी 1 से 2 कप आप ले सकते हैं आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। स्वाद के लिए श्रोता साथियों, आपको लेना है सेंगा नमक, साधारण नमक, यह स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च लेनी है 1 से 2 छोटा चम्मच। साथ ही श्रोता साथियों, स्वाद बढ़ाने के लिए आप हरी मिर्च 1 चम्मच बारीक कटी हुई आपको लेनी है। पुदीना के पत्ते लेने हैं थोड़े से। धनिया के पत्ते लेने हैं 1 बड़ा चम्मच। लहसुन की कलियां लेनी है 1 से 2 कलियां आप ले सकते हैं, अगर आपको तीखा स्वाद पसंद हो तो। तो साथियों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अब यही बात आती है, हमें इसे बनाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है। तो साथियों, सबसे पहले विधि की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपको मूंगफली तैयार करनी है। अगर कच्ची मूंगफली है तो आपको उसे हल्का भून लें। अगर कच्ची मूंगफली है तो आपको उसको थोड़ा हल्का भून लेना है। भूनने के बाद ठंडा करके उसका छिलका निकाल लें। अब इसे मिक्सर में डालकर या सिलबट्टे पर दरार से पीस लें। पुराने शिली में श्रोता साथियों, इसे सिलबट्टे पर घोटा जाता था, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता था। साथ ही श्रोता साथियों, आपको दही तैयार करना है। दही को एक बड़े बर्तन में लें, उसे अच्छे से फेंट कर लें ताकि वह चिकना हो जाए। अगर दही ज्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर हमें उसे पतला कर लेना है। साथ ही श्रोता साथियों, हमें गोटा तैयार करना है। अब पीसी हुई मूंगफली को दही में मिलाएं, अच्छी तरह से चलाएं ताकि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें श्रोता साथियों, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च डालें। स्वाद बढ़ाने के लिए साथियों, आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पुदीना और धनिया डालें। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा लहसुन आप डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ठंडा ठंडा परोसें। श्रोता साथियों, इसे ठंडा पिए या आप खाएं। रोटी, बाजरे की रोटी या चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। गर्मी में इसे लस्सी या रायते की तरह भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, इस व्यंजन विधि के कई सारे लाभ हमें मिलते हैं, जैसे कि इससे हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहता है और साथ ही हमारी ऊर्जा का स्रोत भी बना रहता है, हमारे पाचन में सुधार होता है। साथ ही श्रोता साथियों, अगर हमें कमजोरी है तो ये हमारी कमजोरी को भी दूर करता है, हमारे हड्डियों के लिए फायदेमंद है। ये तो श्रोता साथियों, मैंने बताया कि आपको इसके क्या लाभ मिल सकते हैं, साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। साथ ही श्रोता साथियों, इसको आप बहुत ज्यादा मात्रा में न लें। जिन लोगों को दही सूट नहीं करता वे सावधानी रखें। रात में खाने से बचे, ठंडा प्रभाव होने पर खाएं। अगर सर्दी जुकाम हो तो इसे न लें। श्रोता साथियों, यह रेसिपी खासकर गाँव में बनाई जाती है। खेतों में काम करने वाले लोग इसे ऊर्जा के लिए खाते हैं। इसे प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है। साथ ही श्रोता साथियों, इसमें कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फैट, हल्दी फैट होते हैं, विटामिन बी होता है। श्रोता साथियों, मूंगफली और दही का देसी घोटा सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा और स्वास्थ्य का संगम है। यह हमें सिखाती है कि साधारण चीजों से भी हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। तो श्रोता साथियों, इस गर्मी में बाजार की ठंडी चीजों से दूर रहें और अपनाएं अपने घर की देसी और सेहतमंद रेसिपी। तो श्रोता साथियों, ये तो हमने जाना कि हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से मूंगफली और दही का घोटा की विधि को अपनाकर कैसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, पर जाने से पहले सुन लेते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ में हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही वो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है, जिसका मतलब है, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।